0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों के अनुरोध पर ईरान पर सैन्य हमले को स्थगित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से 2 दिन की चीन यात्रा पर और सैम ऑल्टमैन तथा ओपनएआई ने कैलिफोर्निया की एक अदालत में एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख भी किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट को के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारे संवाददाता से।
2: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन

0: पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर आज रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रोम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात भी करेंगे।
2: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि एक ऐसा समझौता जल्द ही हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समझौते से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। अमेरिका 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के G20 के मुख्य उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका 14 और 15 दिसंबर को फ्लोरिडा के मियामी स्थित ट्रंप नेशनल डोरल के मुख्य G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। अमेरिका सरकार ने क्यूबा के 11 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें वहां के संचार मंत्री, कई सैन्य नेता और मुख्य खुफिया एजेंसी शामिल हैं। ये कदम क्यूबा के कम्युनिस्ट नेताओं पर ट्रंप प्रशासन द्वारा दबाव बढ़ाने का एक हिस्सा है। ये कार्रवाई क्यूबा के खिलाफ चलाए जा रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा है। इसके अंतर्गत वेनेजुएला से आने वाले अधिकांश तेल खेपों पर प्रतिबंध के प्रयास भी शामिल हैं। ये कदम जनवरी में वेनेजुएला के नेता को पकड़ने के लिए अमरीकी छापे के बाद उठाया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से चीन की 2 दिन की यात्रा पर हैं। श्री पुतिन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। रूस ने कहा है कि पुतिन और शी चिनफिंग दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के साथ साथ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। पुतिन का यह दौरा 2001 में हुए चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। कैलिफोर्निया की एक अदालत ने सैम ऑल्टमैन और ओपनएआई के खिलाफ एलन मस्क के दावे को खारिज कर दिया है। मस्क ने आरोप लगाया था कि ओपनएआई अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। ओकलैंड की संघीय अदालत ने माना कि मस्क ने ये मुकदमा करने में देर कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मस्क के उस दावे को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ओपनएआई इंसानियत की भलाई के लिए काम करने के अपने शुरुआती वादे से मुकर गई है। 28 अप्रैल को शुरू हुए इस मुकदमे में मस्क ने आरोप लगाया कि कंपनी ने अपने पुराने आदर्शों को छोड़कर सिर्फ मुनाफा कमाने और अपने निवेशकों को अमीर बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 118 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतर

0: राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। इटुरी और उत्तरी किवू प्रांतों में 118 और लगभग 30 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। पड़ोसी देश युगांडा में भी एक मौत और एक संदिग्ध मामले की पुष्टि हुई है। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद फंसे रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने एक आदेश में 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों के अनुरोध पर ईरान पर सैन्य हमले को स्थगित किया और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से 2 दिन की चीन यात्रा पर हैं। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good morning, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for $100 billion investment and 1 million jobs under India EFTA agreement at the Business and Research Summit in Oslo, Norway. Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at the 3rd India-Nordic summit today. US President Donald Trump postpones planned attack over Iran at request of Gulf allies. Russian President Vladimir Putin embarks on 2-day visit to China beginning today. And Sam Altman and OpenAI wins lawsuit against Elon Musk in California. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under the consequent creation of 1 million jobs in India.
2: EFTA countries se Bharat mein agle 15 varshon mein $100 billion investment aur 1 million jobs create karne ka lakshya hai. Ye ambitious target hai lekin achievable hai aur Bharat mein aapke investment ko आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, यह हमारी गारंटी है।
1: मिस्टर मोदी आल्सो अंडरस्कोर्ड इंडियाज एम्बिशियस ग्रीन ट्रांजिशन एजेंडा एम्फसाइजिंग द कंट्री स्केल ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स क्लाइमेट कमिटमेंट्स एंड रैपिड एक्सपेंशन इन रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन हाइड्रोजन एंड क्लीन एनर्जी।
2: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
1: The summit was also attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. Earlier, in a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. On Prime Minister's visit to Norway, Secretary West and the Minister of External Affairs, C.V. George, said that India welcomes the decision by Norway to join the Indo-Pacific Oceans Initiative, as both the countries are leading maritime nations.
3: Recognizing the ambitious maritime Amrit Kal Vision 2047 of India, both leaders have called for scaling up the blue economy partnership, including in shipbuilding, green shipping, ship recycling, developing port infrastructure, training of seafarers, fisheries, aquaculture, and greening of ports.
1: Prime Minister Narendra Modi will attend the 3rd India-Nordic Summit today in Oslo, aimed at strengthening India's strategic partnership.

नमस्कार, ट्यून कर चुके हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज आ गई हूँ आपसे बातें करने और बॉलीवुड गानों से जुड़ी आपकी नॉलेज टेस्ट करने भी। आपको क्या करना है वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन नए लिसनर्स की जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि fmgoldair@gmail.com fmgoldair@gmail.com पर ईमेल के जरिए या फिर 9868868753 पर व्हाट्सएप के जरिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। लिखना है अपना नाम और अपने शहर का नाम भी, साथ ही कौन सा गीत सुनना चाहते हैं ये भी आप लिख भेजेंगे, और साथ में शेरो शायरी, कोई अच्छी बात, जो भी आप फील कर रहे हैं इस वक्त जरूर लिखिएगा। मैं कर रही हूँ बेसब्री से इंतजार। और आगे बढ़ें, बातें करें, आपके ईमेल्स और मैसेजेस शामिल करें। उससे पहले मैं आपको सुनवाने वाली हूँ एक आइडेंटिकल म्यूजिकल पीस। सुनिए बाकी बातें।

एक बार और सुनिए। तो उम्मीद है कि आपने पूरे ध्यान से सुना होगा ये म्यूजिक पीस। अब आपको बताना है कि ये किस गाने का हिस्सा है, किस गाने की स्टार्टिंग में, किस गाने के बीच में ये आता है, और लिख भेजना है वहीं ईमेल के जरिए और व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए, ठीक है। और मुखड़ा आप लिखकर भेजेंगे और फिलहाल एंजॉय करेंगे ये मस्ती भरा गीत मेरी ओर से।

जी बिल्कुल, मतवाला जिया तो बोलेगा ही, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है दिल का मेल बॉक्स, जहां आपके ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं। और अब मैं जिन्हें करने वाली हूं कार्यक्रम में शामिल भी, उससे पहले एक बार और आपको सुना देती हूं वो म्यूजिक पीस जिसे सुनकर और पहचानकर आपको लिखकर भेजना है गाने का मुखड़ा। तो जो भी जानकारी है आपके पास लिख भेजिए जल्दी से, मैं कर रही हूँ इंतजार। कार्यक्रम के अंत में शामिल करूंगी वो सभी नाम जिन्होंने बिल्कुल शत प्रतिशत सही इस गाने को पहचाना होगा। चलिए, और एक गुजारिश तो और भी की थी मैंने आपसे कि शेरो शायरी या कोई बात जो भी आप लिखकर भेजें, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर मेरा जोश हो जाए दोगुना और आपको भी आए मजा। तो पंजाबी बाग दिल्ली से ईमेल भेजा है परमजीत कौर जी ने दिलबाग सिंह, दिलजोत सिंह और दिलजोत सिंह जी के ही साथ, और सवाल का जवाब भेजा है, फरमाइशी गीत भी भेजा है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट जरूर पूरी करेंगे। तो मैं ढूंढ रही हूँ वो ईमेल जिसमें हो कुछ खास, कुछ ऐसी बात। मिल गई। मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में ऐ कविता। ओहो, जनाब पहले ये बताइए कि ये कविता, ये शायरी माफ कीजिए, किसके लिए लिखी है आपने, कौन सी कविता के लिए? सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से लिखा है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप के साथ, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज भी इस मैसेज में शामिल है। अरे बाबा, इतने सारे लोग एक मैसेज में, थोड़ी सी शायरी और लंबी नहीं होनी चाहिए थी इस हिसाब से। चलिए कोई बात नहीं, फिर से भेज दीजिए, मैं तो यही हूँ। अगला मैसेज आया है भारत भूषण जी की ओर से, लिख रहे हैं जरा नजरे इनायत मेरे मैसेज

मैसेज पर भी कर दीजिए। बिल्कुल जी, कर दी है मैंने नजरे इनायत और शामिल कर लिया है आपका मैसेज। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से लिखा है अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष के साथ इन्होंने ये मैसेज लिख भेजा है। और इसके साथ ही अगला मैसेज मैं शामिल कर रही हूँ उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल जी का। कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश इनके साथ शामिल हैं और इन्होंने भी कोई शायरी नहीं लिखी है, ये तो कोई बात नहीं हुई। अब मेरी नजरें ढूंढ रही हैं बहुत तेजी से वही मैसेज या वही ईमेल जिसमें लिखा हो कुछ खास, जो कि मुझे फिर मिल गया है। अनु बड़जात्या जी ने लिख भेजा है, आप जैसी दोस्त होना ही शायद तकदीर होती है, बहुत कम लोगों के हाथ ऐसी लकीर होती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। डियर, यू मेड माय डे एनर्जेटिक एंड मैम यू आल्सो मेड माय डे एनर्जेटिक। अगला मैसेज खोल लिया है मैंने फैसल इमाम साहब का, मोहम्मद अफजल इनके साथ शामिल है। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से लिखकर भेजा है कि कार्यक्रम का भरपूर आनंद ले रहा हूँ। नाज जी बहुत ही उम्दा कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं, गीतों का चयन भी लाजवाब है। थैंक यू सो मच सर। एक और मैसेज आ गया है, गोल्ड के गीतों में हम खो जाएं, हमारी बातों में आप खो जाएं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कृपया कोई भी प्यारा सा गीत सुना दीजिए। रवि, लता, प्रिया और विनिशा ने भिलाई से ये मैसेज भेजा है और भाई अब तो मुझे गीत सुनाना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। तो ये जो अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं, इसकी फरमाइश आई है हमारे पास मास्टर अशोक वर्मा जी की ओर से। अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, सुदामा नगर खंडवा से इन्होंने ये फरमाइश भेजी है और सच बताऊं बहुत ही प्यारा गीत है, हम सब एंजॉय करने वाले हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जी हाँ, यही है वो म्यूजिक पीस जिसे आप सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। सही या गलत ये कुछ देर में बताऊंगी। फिलहाल शामिल कर रही हूँ आप ही के मैसेजेस और ईमेल्स जो मेरे पास आ रहे हैं और मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छा महसूस करवा रहे हैं। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से एक मैसेज आया है और लिखा है कि आपकी आवाज में छुपा है कोई मीठा सा अफसाना, सुनकर जिसे दिल मेरा हो जाता है पूरी तरह दीवाना। जब भी आप धीरे से मेरा नाम बोलते हो, यकीन मानो आप इस धड़कते हुए दिल को जीत लेते हो। कोयल की कूक भी आपके आगे अब फीकी सी लगती है, आपकी हर एक बात सीधे इस रूह में उतरती है। खामोश सुबह में जैसे कोई सुरीली सी बांसुरी बाजे, आपकी आवाज का जादू मेरे कानों में हर पल साजे। और आपकी आवाज पर हमें बड़ा नाज है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी तारीफ। उफ, आज का दिन तो बन गया। तो किसका है मैसेज ये भी बता देती हूँ। बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार के साथ ये मैसेज आया है। दिनेश चौहान भी इसमें शामिल है रामदेवरा से। बाबूराम जयपाल शामिल है डांगरी से। और खलीफों की बावड़ी से शामिल है खुदा बख्श खलीफा।

रेडियो दीवाना कहते हैं ये खुद को। बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छी शायरी, बहुत ही अच्छी बात आपने लिखकर भेजी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगला मैसेज है कृष्ण कुमार गुप्ता जी का, भटीपुरा महोबा यूपी से लिख रहे हैं कि वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं तो किस काम की तेरी जवानी। ये शेर क्रिकेटर सिद्धू जी ने फरमाया था, ये भी इन्होंने बता दिया है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। अगली जो मैं लाइनें पढ़ने जा रही हूं आपके लिए, वो दरअसल एक कविता है, थोड़ी सी लंबी है लेकिन शामिल किए बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है। सतीश अनेजा जी ने लिखकर भेजा है चंडीगढ़ से कि आगाज हो चुका है प्रोग्राम का, चमक उठा आसमान, सबको भागीदारी मिलेगी, होगा सबका सम्मान, आज फिर 10:30 बजते ही खुशियों की लहर छा गई, देखो देखो नाज बहना मोहब्बतें बांटने जो आ गई। वाह क्या बात है, मौसम ने ली करवट, 3 दिन से तबीयत रही नासाज, उफ यकीनन राहत सी मिल गई जब सुनी बहना की आवाज। सभी श्रोता शिद्दत से इस वक्त का इंतजार करते हैं, खुदा गवाह है गोल्ड से हम बेपनाह प्यार करते हैं। ईमेलों से सुर है टपके, व्हाट्सएप से सुरीला साज, दोनों के तरन्नुम से प्रोग्राम पेश करती बहना नाज। आपकी निष्ठा और मेहनत से प्रोग्राम बन चुका सरताज, हमें आप पर गर्व है और रहेगा प्यारी बहना नाज। जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है सबका प्यारा गोल्ड, खुशियों की बरखा कर दी, गमों को कर दिया फोल्ड, बहन मेरी का इसने हम सबको मिलता भरपूर रहे, मांगो दुआ रब से गर्म हवा भी बहन से दूर रहे। क्या बात है सर, सब कुछ लिख डाला आपने तो और दिल खुश कर दिया। सतीश अनेजा जी, विमला अनेजा जी के साथ चंडीगढ़ से ये खूबसूरत कविता आई है हमारे पास। और भाई अगला मैसेज भी हम पढ़ लेते हैं जो कि आया है रवि जी की ओर से, लता प्रिया और विनिशा इसमें शामिल हैं। लिखा है कि गोल्ड के गीतों में हम खो जाएं, हमारी बातों में आप खो जाएं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, ये तो सब

छनेजा जी, विमला अनीजा जी के साथ। चंडीगढ़ से ये खूबसूरत कविता आई है हमारे पास। और भाई अगला मैसेज भी हम पढ़ लेते हैं जो कि आया है रवि जी की ओर से। लता, प्रिया और विनिशा इसमें शामिल हैं। लिखा है कि गोल्ड के गीतों में हम खो जाएं, हमारी बातों में आप खो जाएं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है, ये तो सबसे बेस्ट है। और दोस्तों अगला मैसेज आया है राजेंद्र जटोलिया जी का। लिख रहे हैं, सुबह की पहली किरण कहती है मुस्कुराइए, हर दिन को नए सपनों से सजाइए, जो बीत गया उसे दिल से भुलाइए, आज की सुबह को खुशियों से अपनाइए। बिल्कुल सही बात। और अपनाने लायक भी दिल्ली नांगलोई से ये मैसेज आया है और फरमाइशी गीत भी लिखकर भेजा है। भाई बहुत बढ़िया। अगला मैसेज एक और मैं शामिल कर रही हूँ। अनु जी ने ही लिखा है ये, और अनु बड़जात्या मुंबई से शमशुल खान और अनुराज बिनारा के साथ। लिखती हैं कि फूलों की सुगंध से सुगंधित हो जीवन तुम्हारा, तारों की चमक जैसा चमके सदा जीवन तुम्हारा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और दोस्तों वक्त का तो पता ही नहीं लगा कैसे बीत गया, बताइए 10:52 हो गए, आपको पता चला क्या? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं लगा, क्योंकि अभी भी मेरे सामने आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, लगातार आप लोग भेज रहे हैं और मेरा मन कर रहा है कि मैं बस पढ़ती ही जाऊं, कोई मुझे ना रोके। लेकिन ये कमबख्त घड़ी, इसके लिए तो रुकना ही पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा मुझे साथ में आज के सवाल का जवाब भी। वो बताऊं इससे पहले एक बार और सुनिए ये म्यूजिकल पीस। जी हाँ, ये म्यूजिकल पीस हिस्सा है एक बेहद बेहद बेहद खूबसूरत गीत का, जो कि हिस्सा था साल 1994 में आई सुपर हिट फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का। और इसके गाने हुफ, वैसे तो हर गाना एक से बढ़कर एक है, लेकिन स्पेशली ये गाना जिसे आपने है पहचाना, ये तो चार्ट बस्टर सॉन्ग था, है ना? और 90s की मशहूर जोड़ी कुमार सानू और अलका याग्निक ने इसे गाया है। हसरत जयपुरी साहब के बोल हैं और अनु मलिक साहब की जादुई म्यूजिकल कॉम्पोजिशन आप इसमें सुनते हैं। उस वक्त का सुपर हिट सॉन्ग जो 90s के नॉस्टैल्जिया को ताजा कर देता है और समझाता है रोमांस की नई परिभाषा। फिर चलिए आप और मैं इंजॉय करें ये खूबसूरत सॉन्ग। उससे पहले जान लेते हैं उन होनहार लिसनर्स के नाम जिन्होंने पहचाना इस धुन को और दिया बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। तो सईद अब्बासी साहब का सबसे पहला मैसेज आया था, मैंने नोट किया था, चौखुंटी बुलंद शहर से। अनीता वर्मा दिल्ली से, आफताब अंसारी, जयराम खोरवाल होली चौक उत्तम नगर से, कौशल्या देवांगन बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद फुरकान सियाल मेरठ से, प्रदीप डिमरी देहरादून से, भारत भूषण बेंगलुरु से, धीरज यादव गुरुग्राम से, जगदीश कुमार नांगलोई दिल्ली से, सुभाष दिल्ली से ही, संजय ढींगिया बागपत से, सुदर्शन मुखी शांतिनगर सोनीपत से, धर्मेंद्र छीपा राजस्थान से, और मुझे पता है कुछ नाम शामिल नहीं हो पाए हैं क्योंकि बहुत तेजी से स्क्रीन मेरी दौड़ रही है और जल्दी से मैं लास्ट के कुछ नाम कोशिश कर रही हूं कि शामिल कर लूं ताकि आप लोग थोड़ा सा कम नाराज हो मुझसे। तो अभी अभी मैसेज आया है मनोहर लाल गांधी जी का, चाणक्य चौक विजयनगर गाजियाबाद से। इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई। इसके अलावा हिसार से भी मैसेज आ गया है राजकुमार डूडी जी का, प्रमोद कुमार डूडी इनके साथ शामिल है फरासी जिला हिसार से, इन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही जवाब। और जॉन डिकेस्ट्रो साहब ने भी बिल्कुल सही जवाब के साथ जनकपुरी सहारनपुर से जवाब भेजा है और किसी भी गीत में शामिल होने की ख्वाहिश रखी है, तो बिल्कुल आप शामिल हो चुके हैं। और ईमेल पर भी नजरें डाल लेते हैं तो राशिद हुसैन साहब का मैसेज आया है अभी अभी। लिखा है कि प्यारी सिस्टर आरजे नाज जी, आपको प्यार भरा आदाब, दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और खैरियत से रहें। जी बिल्कुल आमीन, आप ही खैरियत से रहें ऐसी हमारी दुआ है। किसी भी सदाबहार नगमे में शामिल होना चाहते हैं और ये मैसेज लिखा है इन्होंने जैन मंदिर वाली गली खुरावली से। मोहम्मद कैफ अंसारी, आसना अंसारी, नौरीन और नसरीन के साथ ये मैसेज इन्होंने भेजा है। और फिलहाल माफी के साथ अब मैं सुनाने जा रही हूँ आप

वही ब्लॉकबस्टर सॉन्ग जिसे आपने पहचाना और बहुत अच्छी तरह से पहचाना। लेकिन दोस्तों, एफएम गोल्ड का साथ आपको नहीं छोड़ना है, यूं ही बने रहना है। इस गीत के उस पार आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और फिर मैं होंगी आपके साथ। फिर मिलेंगे, प्रोग्राम होगा तस्वीर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछड़ा

0: सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार तथा अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेरल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग पर आधारित मजबूत संबंध साझा करते हैं। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला न करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ लाल रुजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रूपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रूपये है। मुंबई में बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 से अधिक अंक की वृद्धि के साथ 75,706 पर, जबकि निफ्टी 107 अंक बढ़कर 23,760 पर था। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA.
2: EFTA countries se Bharat mein agle 15 varshon mein

नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर हैं आप, जिसे ट्यून किया है आपने 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और मैं आपकी होस्ट और घुमक्कड़ दोस्त आ गई हूँ लेकर तस्वीर। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 11:11:25। एंड एज यू नो ऑलरेडी कि ये समय है आपका मेरे साथ एक ऐसे सफर पर चलने का, जो बेइंतहा खूबसूरत होने के साथ साथ सदाबहार गीतों से भी सजा होगा। तो अब से लेकर ठीक 12 बजे तक आप करेंगे मेरे साथ ऐसी जगह की सैर, जहां आपको मिलेंगे खूबसूरत पहाड़, घने जंगल और खूबसूरत मौसम भी। यानी नेचर के करीब पहुंचने के लिए ये जगह बेस्ट है। और हिंट आपके लिए ये है कि इस जगह का कंपैरिजन यानी तुलना की जाती है खूबसूरत ऊटी से। जी हाँ, आंध्र प्रदेश का ऊटी कहा जाता है इस जगह को। और नाम क्या है ये आपको गैस करना है। जल्दी से लिख भेजना है fmgoldairdelhi@gmail.com पर, या फिर चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं कहाँ 9868868753 पर। फिलहाल क्या करना है ये भी बताऊं, सुनना है ये खूबसूरत गाना, जिसे सुनते और एंजॉय करते हुए ही आपको इस खूबसूरत जगह का नाम है बताना।

जी हाँ, कोशिश भी करनी है और वादा भी करना है आपको मुझसे यानी नाज से कि आप बने रहेंगे मेरे और एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि तस्वीर में आज हम चल रहे हैं आंध्र प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन हॉर्सली हिल्स के सफर पर। और जिन्हें थी पहले से ये जानकारी, अब है उनका भी नाम इस तस्वीर में शामिल करने की बारी। तो भाई, कुछ लिसनर्स ने लिखकर भेजा कि आप हमें लेकर चल रही हैं अराकू वैली। माफ कीजिए, आंध्र प्रदेश में ही है और इत्तेफाक ये है कि इसे भी आंध्र प्रदेश की ऊटी ही कहा जाता है। आपका जवाब भी गलत नहीं है, लेकिन आज चूंकि तस्वीर मैं आपको दिखाने और सुनाने जा रही हूँ हॉर्सले हिल्स की, तो उस हिसाब से सही जवाब तीन लिसनर्स का आया है। राज लक्ष्मी मुरलीधरन दिल्ली से, कृष्ण कुमार गुप्ता भटीपुरा महोबा यूपी से और सुदर्शन मुखी सोनीपत से। जी हाँ, इनके आए बिल्कुल सही जवाब। और आखिर में अभी अभी कुछ पल पहले एसके खन्ना जी ने भी कर दिया सही जवाब का मैसेज और गुरुग्राम से। चलिए वापस लौटते हैं और बात करते हैं हॉर्सली हिल्स की। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के शहर मदनपल्ली के करीब मौजूद हॉर्सली हिल्स साउथ इंडिया की सबसे शांत और सुंदर जगहों में से एक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आंध्र प्रदेश का ऊटी कहकर इस जगह की खूबसूरती को एक खास पहचान दी जाती है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा के पास मौजूद है ये पहाड़ी इलाका, स्थानीय रूप से एनुगु मल्लम्मा कोंडा के नाम से भी जाना जाता है। कहानी इस नाम के पीछे क्या है ये मैं आपको सुनाऊंगी जरूर, लेकिन उससे पहले चढ़ जाने दीजिए इस अगले बेहद बेहद खूबसूरत ट्रैक का सुरूर।

एनुगु मल्लम्मा कोंडा, इस नाम से हॉर्सली हिल्स को यहाँ के लोकलाइट्स यानी स्थानीय लोग पुकारते हैं। और कहानी इसके पीछे की जुड़ी है एक लड़की से जो कई साल पहले यहीं रहा करती थी और जिसका नाम बताया जाता है मल्लम्मा। वो लड़की यहाँ के हाथियों को चारा डाला करती थी। फिर एक दिन वो अचानक कहीं गायब हो गई। बहुत ढूंढा गया लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। और फिर लोगों ने उसके नाम का मंदिर बनाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दिया और उसी लड़की के नाम पर इस जगह का नाम रख दिया गया एनुगु मल्लम्मा, जिसका हिंदी में मतलब होता है हाथियों को पालने वाली मल्लम्मा। फिर आगे चलकर साल 1870 में ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ के कलेक्टर डब्ल्यू डी हॉर्सली के नाम पर इस जगह का नाम हॉर्सली हिल्स पड़ गया। अच्छा, वैसे आम बोलचाल में इस जगह को ना हॉर्सले हिल्स भी कह दिया जाता है, लेकिन अगर इंग्लिश में नाम की स्पेलिंग और कलेक्टर साहब के नाम पर गौर करें तो सही प्रोनंसिएशन होगा, यानी सही उच्चारण होगा हॉर्सली। और एफएम गोल्ड पर मेरे यानी नाज के साथ आपको बने रहना होगा जानने के लिए कि कैसे और कहां से पहुंचेंगे आप हॉर्सली हिल्स। फिलहाल एंजॉय कीजिए मेरे साथ ये अगला ट्रैक एवरी टाइम, जिसे सुनने के बाद मूड हो जाता है एकदम चिल।

क्वेश्चन आपको पड़ेगा मदन पल्ले रेलवे रोड जो हॉर्सली से सिर्फ सिर्फ 27 किलोमीटर दूर है। अच्छा, बाय रोड भी इस जगह की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। मदन पल्ले सबसे नजदीकी शहर है और इसके अलावा बेंगलुरु, तिरुपति या फिर चेन्नई, आप कहीं भी हों, आराम से बस या फिर टैक्सी के जरिए हॉर्सली हिल्स पहुंच सकते हैं। सवाल अगर आपके मन में ये भी हो कि किस मौसम में यहाँ आना चाहिए, तो उसका जवाब है कभी भी। जी हाँ, क्योंकि यहाँ का मौसम लगभग हमेशा ही सुहाना और सदाबहार रहता है, ठीक वैसे जैसे ये अगला गाना। मानो वक्त बीतने और जमाने बदलने का इसकी मेलोडी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता।

अच्छा, कैसे पहुंचेंगे हॉर्सली हिल्स? इस ट्रैक से पहले छोड़ा था मैंने ये सवाल, और जनाब बड़ा ही सिंपल है इसका जवाब। बाय एयर आने का अगर आप बजट रखते हैं तो सीधा टिकट बुक कर लीजिए तिरुपति एयरपोर्ट का, जहां से हॉर्सली हिल्स की दूरी सिर्फ 160 किलोमीटर है। इसके अलावा बाय ट्रेन अगर आप आते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, क्योंकि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। स्पेशली ड्यूरिंग माय यूथ डेज मैं युववाणी में अपनी कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने जाती थी, और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने दिल की बात पूरी बोल पाती थी। बहुत लोग मुझे सुनते थे और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिलती थी, और तारीफ के साथ मुझे जो छोटा सा अमाउंट मिलता था, मैं 90s की बात कर रही हूँ, वो बहुत कीमती होता था। मुझे जो वहां से सम्मान मिला वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission, information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तस्वीर है प्रोग्राम का नाम जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मेरे यानी नाज के साथ। और हम निकले हैं आज आंध्र प्रदेश और पहुंच गए हैं खूबसूरत हॉर्सली हिल्स। पहाड़ी इलाका है तो जाहिर है कि खूबसूरत नजारों की तो यहाँ कोई कमी है नहीं। परिवार के साथ यादगार और आरामदेह छुट्टियां आप यहाँ पर बिता सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? आपको जरूर होनी चाहिए यहाँ के फेमस स्पॉट्स की जानकारी। कैसे मिलेगी? अरे यहीं और अभी मिलेगी जनाब। मेरा सजेशन फॉलो करेंगे तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए हॉर्सली हिल्स की मशहूर चेन्ना केसवा मंदिर और लेना चाहिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद।

16th सेंचुरी में चोल साम्राज्य के दौरान इस इलाके के स्थानीय प्रमुख ने इस मंदिर की स्थापना की थी। और ये बता दूं आपको कि साउथ इंडिया के रिच कल्चर और आर्किटेक्चर का बेहद खूबसूरत नमूना आप इस जगह को मान सकते हैं। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा काफी बड़ा है, जहां रामायण से जुड़े कई चित्र आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद आप निकलिए करने नेचर का सफर, जिसके लिए झरनों और झीलों से बेहतर और कुछ भी नहीं। हॉर्सली हिल्स के ऊपर की ओर मौजूद तलकोना फॉल्स आप जाइए, जो कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क के हरे भरे नजारों में अपनी अलग आइडेंटिटी रखता है। आंध्र प्रदेश के सबसे ऊंचे झरनों में से ये एक है। 270 फीट की ऊंचाई से गिरता ये घुमावदार झरना वाकई किसी अजूबे से कम नहीं है। वैसे अगर आपको लगता है कि लाइफ बड़ी बोरिंग सी हो गई है, सब कुछ बड़ा यूजुअल सा है आसपास, तो ये अगला गाना जरा गौर से सुनिएगा। कितनी खूबसूरती से जावेद अख्तर साहब ने बताया है कि अजूबे तो हर तरफ हैं, बस देखने और समझने की देर है।

करीब 40 फीट ऊंचा ये झरना है और नेचर की अनबिलीवेबल कलाकारी का एक शानदार नमूना भी। इसके बाद आप पहुंचिए विस्पर व्यू पॉइंट, जो हॉर्सली हिल्स के मस्ट गोइंग प्लेसेस में से एक है। हरे भरे जंगल जिनके बीच खूबसूरत पहाड़ियां और गहरी घाटियां, पिक्चर्स क्लिक करने के लिए ये जगह बेस्ट है जनाब। हॉर्सली हिल्स में मौजूद गंगोत्री झील की सैर भी आपको जरूर जरूर जरूर करनी चाहिए, जहां का शांत माहौल आपको वो सुकून यकीनन देगा जिसकी आपके मन और तन को जरूरत है। ऊंचे यूकेलिप्टस के पेड़ों से घिरी ये जगह वाकई आप कभी नहीं भुला पाएंगे। और एक जगह के बारे में सुनते जाइए जिसे भी आप कभी नहीं भूल पाएंगे, और वो है कल्याणी। असल में कल्याणी एक यूकेलिप्टस का पेड़ है जिसकी उम्र 150 सालों से भी ज्यादा है। जी हाँ, साल 1859 में इस पेड़ को लगाया गया था यहाँ, और अब इसकी ऊंचाई करीब 40 मीटर के आसपास है। 5 मीटर के इलाके में फैला यह ऐतिहासिक पेड़ पक्षियों की कई प्रजातियों का घर है और एक बार देखने लायक तो जरूर जरूर है। फिलहाल साथ छोड़कर जाइएगा नहीं कहीं, सुनेंगे ये अगला गाना और जल्दी से वापस आएंगे।

और अगर एक और अजूबा देखने की है आपकी ख्वाहिश, तो बिना देरी पहुंच जाइए कैगल फॉल्स, जो अगेन हॉर्सली हिल्स की बेहतरीन जगहों में से एक है। बड़ी सी चट्टान से गिरता

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आंध्र प्रदेश के चित्तूर से मदनपल्ली शहर और फिर हॉर्सली हिल्स की सैर पर निकले हैं आप मेरे यानी नाज के साथ। और प्रोग्राम चल रहा है तस्वीर, जहां अब मैं आपको लेकर चलना चाहूंगी गैली बंदालू, जो वैसे तो एक ऊबड़ खाबड़ और ढलानदार इलाका है, लेकिन अपनी सादगी और खूबसूरती की वजह से यह हॉर्सली हिल्स का सबसे पसंद किया जाने वाला स्थान है। बस जंक्शन से 300 मीटर की दूरी पर मौजूद इस जगह का नाम गैली बंदालू क्यों पड़ा, ये जानने के लिए आपको समझना होगा यहाँ की ज्योग्राफी को। असल में तेलुगु भाषा के शब्द गैली का मतलब होता है हवा और बंदालू माने चट्टान या पथरीला ढलान। तो मेहरबान, मसला कुछ यूं है कि ये जगह बेसिकली एक विशाल प्राकृतिक और मखमली ढलान वाली चट्टान है, और जिसकी सबसे बड़ी खासियत है ये कि यहाँ साल के 12 महीने और दिन के 2400 घंटे बेहद तेज और ठंडी हवाएं चलती हैं। कई बार हवा का झोंका इतना तेज भी हो सकता है कि आपको अपनी जगह पर खड़े रहने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ जाए, लेकिन यहां से नजर आने वाले खूबसूरत नजारे वाकई उस मेहनत और मशक्कत को वसूल कर देते हैं। एडवेंचर का अगर आप शौक रखते हैं तो भी ये जगह आपके लिए है, क्योंकि आखिरी छोर पर थोड़ी खड़ी ढलान है यहाँ, जिस पर एक छोटी सी हाइक का मजा आप आराम से ले सकते हैं। और फ्रॉम हॉर्सली हिल्स नेचर लविंग, अगर आपका है नेचर तो ये जगह आपकी बकेट लिस्ट में होनी चाहिए, जिसके बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूँ। द फेमस जू यानी चिड़ियाघर की मैं बात कर रही हूँ। क्यों ऐसा है ये आप अभी जान जाएंगे। हरे भरे पेड़ पौधों और खूबसूरत पहाड़ों से घिरा ये चिड़ियाघर घर है कई वन्य जीवों का, मोर, जंगली बंदर, मगरमच्छ, चित्तीदार हिरण और रंग बिरंगे तोतों के साथ आपको यहाँ कई तरह के कबूतर भी दिखाई दे जाएंगे। और कल्याणी नाम के जिस विशाल और 150 सालों से भी पुराने यूकेलिप्टस पेड़ का मैंने आपसे जिक्र किया था, वो भी यहीं पर आपको मिलेगा। छोटा सा एक तालाब भी है जहां आप पैडल बोटिंग का मजा ले सकते हैं, और इसके साथ ही घने पेड़ की छांव में बिता सकते हैं परिवार के साथ कुछ सुकून के पल। और इतना कुछ करने के बाद जाहिर है कि जरूर लगेगी आपको भूख। तो जनाब, उसके लिए भी कुछ खास नहीं करना है। पूरे हॉर्सली हिल्स में आपको हर जगह साउथ इंडिया का बेहतरीन और ऑथेंटिक टेस्ट मिल जाएगा, साथ में नॉर्थ इंडियन और चाइनीज डिशेस भी वैरायटीज के तौर पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। फेमस आइटम्स में शामिल है यहाँ की आंध्र थाली, जिसमें केले के पत्ते पर आपको चावल, पपू यानी दाल, सांभर, रसम के साथ पचड़ी यानी चटनी और खुरमा यानी सब्जी के साथ ढेर सारा शुद्ध घी परोसा जाता है। नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं तो यहाँ की मसालेदार आंध्रा स्टाइल चिकन बिरयानी और गोंगूरा के खट्टे स्वाद के साथ बनने वाली यहाँ की स्पेशल चिकन या मटन करी जरूर टेस्ट करनी चाहिए। ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म इडली, क्रिस्पी डोसा, वड़ा, उपमा और मैसूर बोंडा आपको हर जगह मिलेगा। साथ में यहाँ की ऑथेंटिक फिल्टर कॉफी का गिलास तो बनता है बॉस। और फिलहाल घड़ी का इशारा मैं समझ रही हूँ और मुझे कहना चाहिए अब आपको अलविदा। ये वादा रहा आपसे कि बहुत जल्द फिर किसी नई तस्वीर के साथ जरूर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय और एक प्यार भरा नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में

0: द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
1: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
2: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. We have more from our correspondent.
4: This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in 2022. The areas in focus are tech and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. With TEPA in force, the summit will try to forge deeper trade and investment linkages. India's bilateral trade with this bloc currently stands at $19 billion. This summit will help in expanding our multifaceted cooperation with the region. It will also provide an opportunity to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Prime Minister Modi will also hold bilateral meetings with the

0: 당근.
1: आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. कार्यक्रम है घर आंगन. आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर भी. आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी राधा पाठक. स्वीकार करें मेरा नमस्कार. दोस्तों, इंसान की जिंदगी में संगीत का रिश्ता हमेशा से अटूट रहा है. ऐसे में अगर आप तनाव से दूर और खुशहाल रहना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके संगीत यानी म्यूजिक से रिश्ता कायम कर लीजिए. कहने का मतलब यह है, अगर आप संगीत सुनना पसंद करते हैं तो इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए. हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो संगीत सुनिए. संगीत की खूबी भी यही है कि जब चाहे जैसा चाहे सुने और फिर अपना मूड बदल लें. कह सकते हैं कि संगीत हमारी जिंदगी के हर पल का साथी है, हमारा हमसफर है. जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक खाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा को स्वस्थ और सकारात्मक रखने के लिए संगीत की आवश्यकता पड़ती है. आप चाहे कितने भी बिजी हों, कितने भी व्यस्त हों, हम यही कहेंगे कुछ समय अपने लिए निकालिए, संगीत का संग अपनाइए. वजह, कई शोध भी यही बताते हैं कि संगीत का असर हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है. अगर आप सोच रहे हैं कि सोते वक्त आपको गाना सुनना चाहिए या खाते वक्त गाना सुनना चाहिए, तो बस संगीत के लिए सोचिए मत. हर वक्त आप संगीत सुन सकते हैं. सोते समय सुखदायक संगीत सुनना शुरू कर दीजिए. एक सुखद नींद के लिए सोने से पहले अगर आधा घंटा आप संगीत सुनते हैं तो बहुत अच्छा रहता है. आप पाएंगे कि तनाव मुक्त नींद और पर्याप्त नींद में ये कितना सहायक है. धीमा संगीत सुनने से आप आराम महसूस करते हैं. जैसा कि सभी जानते हैं, संगीत से चिंता भी दूर होती है और इससे आपको स्वस्थ जीवन मिलता है, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है.

गूंज उठी शहनाई, इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। संगीत के इन सुनहरे पलों को और भी शानदार बनाने के लिए बना रहे आकाशवाणी का साथ। जी हाँ, आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में संगीत में ढेर सारे बदलाव आए हैं। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में संगीत न केवल मनोरंजन का साधन रहा, बल्कि इसने भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने और आधुनिकता के साथ जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1936 में अपनी स्थापना के बाद से संगीत में आए बदलावों को ऐसे समझा जा सकता है कि हम कह सकते हैं 1950 का जो दशक था वो शास्त्रीय संगीत का संरक्षण का दौर था। राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम 1952 में 20 जुलाई 1952 को राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी और कर्नाटक को आम जनता तक पहुंचाना और संरक्षित करना था। नेशनल ऑर्केस्ट्रा, दिल्ली में नेशनल ऑर्केस्ट्रा की स्थापना भी हुई, जिसका नेतृत्व महान सितार वादक पंडित रविशंकर ने किया था। शास्त्रीय संगीत के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करने हेतु 1954 में पहला रेडियो संगीत सम्मेलन आयोजित किया गया और आज तक इसके 67 से ज्यादा संस्करण पूरे हो चुके हैं। सुगम और फिल्म संगीत का उदय होता है तब आकाशवाणी की बात करें तो विविध भारती की शुरुआत 3 अक्टूबर 1957 को शुरू की गई विविध भारती सेवा। इसके माध्यम से फिल्मी गाने, सुगम संगीत और हवा महल जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों ने संगीत के प्रति आम लोगों का नजरिया बदल दिया। हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती पर हवा महल कार्यक्रम शुरुआत किया गया। ये कार्यक्रम 15 मिनट के हल्के फुल्के रेडियो नाटक और स्किट्स पर आधारित था। इसमें भारतीय लोक कथाओं, सामाजिक विषयों और रोजमर्रा की जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों को नाटकीय और रोचक अंदाज में पेश किया जाता था। 1970 और 1980 के दशक में अपनी लोकप्रियता के चरम पर पहुंच चुके इस कार्यक्रम का 25 अक्टूबर 1972 को 1000वां एपिसोड प्रसारित हुआ था। तो आप जान सकते हैं कि आकाशवाणी का ये सफर इतना लंबा आपके साथ यानी श्रोताओं के साथ के बगैर तो हिट हो ही नहीं सकता। आपकी पसंद ही तो आकाशवाणी के सफर में साथी बनी। हवा महल कार्यक्रम भारतीय रेडियो के स्वर्णिम दौर का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। आकाशवाणी ने भारत के दूर दराज के इलाकों के लोक संगीत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वर्तमान में यह 23 भाषाओं और 189 बोलियों में संगीत और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। हाल ही में 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तर पूर्व भारत की संगीत विविधता को प्रदर्शित करने के लिए विशेष नॉर्थ ईस्ट म्यूजिक कंसर्ट भी आयोजित किए गए। अब आधुनिक बदलावों की बात करें तो डिजिटल और एप्स में ट्रांजिस्टर से शुरू हुआ संगीत का सफर आज मोबाइल एप्स यानी न्यूज ऑन AIR और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच गया है। नई सिग्नेचर ट्यून प्रतियोगिता रखी गई। अपनी 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी ने नए युग के अनुरूप कार्यक्रमों के लिए एक नई सिग्नेचर ट्यून और जिंगल्स बनाने की प्रतियोगिता भी शुरू की। आधुनिक श्रोताओं के लिए अब संगीत और बातचीत को आकाशवाणी पॉडकास्ट के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाता है। आकाशवाणी आज भी अपनी परंपराओं को संजोए हुए है और इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का सच्चा संवाहक माना जाता है। तो यहां हम आपसे बातें कर रहे थे आकाशवाणी के 90 सालों के सफर की कि संगीत में कैसे कैसे बदलाव हुए, लेकिन आकाशवाणी हमेशा अपने श्रोताओं से जुड़ा रहा। और हम तो यही कहेंगे आकाशवाणी का ये सफर हमारे साथ यूं ही चलता रहे।

आई मिलन की बेला, इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। दौर बदलते हैं, वक्त बदलते हैं और बदलता है समाज। आज के भारत में महिलाओं की शक्ति और उनकी भूमिका में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। नारियां, महिलाएं अब केवल समाज का हिस्सा नहीं बल्कि देश के विकास का मुख्य आधार बन चुकी हैं। आज की नारी शक्ति में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे निर्णय लेने की शक्ति। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों से लेकर पंचायत स्तर तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। राजनीति की बात करें तो संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण और महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे वित्त और रक्षा का कार्यभार संभालकर महिलाओं ने साबित कर दिया कि वो देश की दिशा तय करने में सक्षम है। प्रशासन की बात करें तो आईएएस, आईपीएस और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या और उनके काम करने के जज्बे ने व्यवस्था में पारदर्शिता और संवेदनशीलता बढ़ाई है। आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में भी बात कर लेते हैं। आज की महिला सिर्फ नौकरी नहीं कर रही बल्कि नौकरियां दे भी रही है। स्टार्टअप्स की बात करें तो भारत के कई सफल स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न कंपनियों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं और बहुत सफलता से कर रही हैं। ग्रामीण सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों और के माध्यम से गांव की महिलाएं छोटे उद्योगों को वैश्विक पहचान दिला रही हैं। जी हां, एनजीओस में इतना काम होता है, इतनी सारी महिलाएं हैं जो गांव की, पंचायत की और आसपास के एरिया की सारी जो लोक कलाएं हैं, लोक संस्कृति हैं, उनको पहचान दिलवा रही हैं और विश्व यानी वैश्विक स्तर पर पहचान दिला रही हैं। इस बारे में बात करते रहेंगे, सुनते हैं, साथ साथ गीत भी सुनते चलते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत दिलीप मंदिर फिल्म से था और बात चल रही थी महिलाओं की आज की नारी शक्ति की। अब मंगलयान हो या चंद्रयान, इसरो की महिला वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया कि अंतरिक्ष की ऊंचाइयां भी इनसे दूर नहीं है। स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती रुचि नए भारत की आधुनिक सोच को दर्शाती है। डिफेंस की बात करें तो एक समय था जब सेना में महिलाओं की भूमिका सीमित थी, लेकिन आज महिलाएं फाइटर जेट उड़ा रही हैं, सीमाओं पर तैनात हैं और युद्धक भूमिकाओं में अपनी बहादुरी का परिचय दे रही हैं। ओलंपिक हो या विश्व चैंपियनशिप, देश को सबसे ज्यादा गर्व के क्षण महिला खिलाड़ियों ने दिए हैं। जी हां, खेल के मैदान में परचम लहराया है हमारी महिला खिलाड़ियों ने। क्रिकेट से लेकर कुश्ती और बैडमिंटन तक भारतीय बेटियां वैश्विक मंच पर तिरंगा लहरा रही हैं। सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो आज की महिलाएं शिक्षा के माध्यम से पुरानी कुरीतियों को चुनौती दे रही हैं। वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और समाज में समानता, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा करती हैं। आज की नारी बेचारी नहीं बल्कि शक्तिशाली है। वो अपनी परंपराओं को साथ लेकर

आधुनिकता के पथ पर अग्रसर है। जैसा कि कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां सुख और समृद्धि का वास होता है। आज का भारत इसी मंत्र को हकीकत में बदल रहा है।

0: जिस देश में गंगा बहती है, लता मंगेशकर, मुकेश, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT

प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:30 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त राधा पाठक। बातें हमने इतनी सारी की हैं और ढेर सारी बातें हमारी बाकी भी हैं। और दरअसल महिलाएं हैं जो, क्योंकि हमारा ये जो घर आंगन कार्यक्रम है ये खास महिलाओं के लिए है और हम चाहते भी हैं कि महिलाएं काम करते करते जो दिन भर की थान होती है वो हमारे इस कार्यक्रम के साथ थोड़ा सुकून महसूस करें। हम बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं अपनी महिला सखियों के लिए और हम चाहते हैं कि वो ये सारी चीजें जान पाएं और जागरूक रह पाएं समाज के प्रति। और हम बता दें अपना ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, fmgoldga@gmail.com। जी हाँ, आप हमसे रूबरू हो सकते हैं क्योंकि जो हमारी वार्तालाप है, हमारी बातचीत है, वन वे नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपका जवाब ईमेल पर आना चाहिए कि आपको क्या लगता है इस कार्यक्रम में और क्या होना चाहिए, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है। तो ये हुई ना हमारी बातचीत का पूरा जो स्वरूप है वो यही रहना चाहिए। अब बात करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म की। आजकल जहाँ देखिए मोबाइल सबके हाथ में है, घर हो तो पति पत्नी सास ससुर दादा दादी नाना नानी मामा मामी चाचा चाची बच्चे भाई बहन सब अलग अलग मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। जी हाँ, सबके हाथों में मोबाइल है, रील देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक, कुछ भी सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपसी बातचीत जो है वो लगभग बंद हो चुकी है। किसी भी रिश्ते में, हर रिश्ते में यही चल रहा है। अब घर की क्या बात करें, आप बाहर निकलिए, आप किसी भी सरकारी वाहन में आइए, मेट्रो से आते हैं तो देखिए मेट्रो में हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, स्कूल का स्टूडेंट हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो, ऑफिस जाने वाली महिलाएं हो, ऑफिस जाने वाले युवक हो, पुरुष हो, सबके हाथ में मोबाइल है। महिलाएं जो घर में काम कर रही हैं वो भी काम किया, कुकर में सीटी आने वाली है, सीटी जब तक आएगी तब तक चलो मोबाइल देख लेते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना वो ठीक नहीं है। आज की दुनिया में मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। और अगर चाहते हैं सुकून और शांति और परिवार में आपसी बातचीत बनी रहे तो ऐसे में डिजिटल उपवास यानी कुछ समय के लिए स्क्रीन और इंटरनेट से दूरी बनानी ही होगी। मानसिक और शारीरिक दोनों के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है। लगातार स्क्रीन देखने से दिमाग थक जाता है, डिजिटल उपवास करने से मन को आराम मिलता है और चिंता कम होती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ती है। आप अगर रात में मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट नींद के हार्मोन को बाधित करती है। डिजिटल उपवास जिसकी हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल उपवास हो नींद गहरी और बेहतर हो सकती है। यानी आज के जमाने में जो कहते हैं ना उपवास बहुत जरूरी है शरीर के लिए, हफ्ते में एक दिन उपवास रहना चाहिए, व्रत रखना चाहिए कि आपका शरीर

टॉक्स हो जाता है, तो ये डिजिटल उपवास भी ना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। इससे रिश्तों में सुधार आता है, क्योंकि जब हम स्क्रीन से दूर होते हैं तो परिवार और दोस्तों के साथ वास्तविक बातचीत बढ़ जाती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और भावनात्मक जुड़ाव बेहतर होता है। लगातार बैठकर स्क्रीन देखने से आंखों में, गर्दन में, पीठ पर असर पड़ सकता है, तो डिजिटल उपवास से शरीर को तो आराम मिलता ही है, एक्टिव रहने की प्रेरणा भी मिलती है और आसपास आप नजर डाल पाते हैं। अब मेट्रो में आप मेट्रो के सफर का मजा लीजिए ना, गाड़ी में बैठे हैं तो बाहर का मौसम का आनंद लीजिए, लोगों को देखिए, बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, क्यों मोबाइल में या स्क्रीन देखनी है। डिजिटल दुनिया से हटकर हम खुद के साथ समय बिता पाते हैं, इसे सोचने, समझने और खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। अब ये किया कैसे जाए, बहुत मुश्किल लग रहा है ना, मुश्किल, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। रोजाना कुछ घंटों के लिए फोन से दूरी बना लें, सोने से एक घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें, हफ्ते में एक दिन नो सोशल मीडिया डे रखें, मतलब जरूरी फोन और मैसेज आप देख लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया के जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे दूरी बनाइए। कोशिश कीजिए हफ्ते में एक दिन ऐसा करें, नोटिफिकेशन को सीमित करें। हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल उपवास कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक स्मार्ट लाइफस्टाइल चॉइस है। थोड़ी सी दूरी आपको ज्यादा सुकून, बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन दे सकती है।

अनुराधा फिल्म में ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। और अब देखिए, ट्वेल्थ के एग्जाम तो हो ही गए थे, अब तो रिजल्ट भी आ चुका है और सीयूटी के एग्जाम भी चल रहे हैं बच्चों के रिजल्ट के बाद। और बच्चों के दिमाग में ये हो गया क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। नीट का एग्जाम भी होने को है, सीयूटी के एग्जाम चल ही रहे हैं, फिर भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब हमारा करियर क्या हो, क्योंकि बहुत जद्दोजहद चलती है आपके रिजल्ट और आपकी अगली लाइफ के बारे में, क्या आपका करियर होना चाहिए। तो एआई में करियर, हम आपको बार बार बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में करियर बनाना आज के समय का सबसे स्मार्ट फैसला हो सकता है। ये केवल कोडिंग तक सीमित नहीं है बल्कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के लिए भी है। आजकल कुछ ऐसे भी करियर हैं जिन्हें किसी भी स्ट्रीम के जो छात्र हैं वो चुन सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स है, एआई, डेटा की समझ रखने वालों के लिए इसकी हर क्षेत्र में जरूरत है, हर सेक्टर में जरूरत है। यूआई यूएक्स डिजाइन, एप्स और वेबसाइट के डिजाइन

बेहतर बनाने का काम ये भी कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया, यूट्यूब, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक फुल टाइम करियर बन चुका है। और एआई की जो हम बात कर रहे हैं उसमें है टेक्निकल और इंजीनियर रोल्स हैं, कोर टेक है, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल के ये इंजीनियर्स ऐसे एल्गोरिदम और मॉडल बनाते हैं जो डेटा से सीख सकते हैं। इसके लिए पाइथन और मैथ की अच्छी समझ होनी चाहिए। एआई डाटा साइंटिस्ट हैं, इनका काम डेटा का विश्लेषण करके भविष्य के रुझानों का पता लगाना है, एआई मॉडल को बेहतर बनाना है। एआई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हैं, ये पूरे एआई सिस्टम का डिजाइन और ढांचा तैयार करते हैं और वो बिजनेस में कैसे काम करेगा ये भी सिखाते हैं। नए जमाने के जो एआई रोल्स हैं यानी इमर्जिंग रोल्स हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर ये सबसे नया और चर्चित रोल है। इसमें एआई जैसे चैट जीपीटी और भी चीजें हैं सही से काम करवाने के लिए सटीक और प्रभावशाली निर्देश प्रॉम्प्ट्स लिखना सिखाया जाता है। इसके लिए कोडिंग से ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग जरूरी है। एआई एथिसिस्ट यानी नैतिकता विशेषज्ञ, एआई पक्षपाती ना हो और नैतिक रूप से सही काम करे ये सुनिश्चित करना इनका ही काम है। फिलॉसफी और लॉ के छात्रों के लिए ये अच्छा क्षेत्र है। एआई कंटेंट क्यूरेटर, एआई द्वारा बनाए गए कंटेंट की जांच करना और उनसे ह्यूमन टच देना। जी हाँ, ह्यूमन टच भी तो बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले यही चाहिए होता है कि कोई भी करियर हो लेकिन वो हमें कामयाबी के साथ साथ हमें सुकून भी दे सके।

अब महिलाएं ये सोच रही हैं, अब देखिए ना, महिलाएं इतना काम कर रही हैं कि घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, और अगर घर भी देखना है, बच्चों की छुट्टियां हो गई तो क्या किया जाए, बच्चे बिजी भी रहे और क्रिएटिविटी भी बनी रहे। तो हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात लेकर आए हैं कि गर्मियों की छुट्टियों को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए। गर्मियों की छुट्टियां माँ और बच्चों की बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा समय होती हैं। इस समय को यादगार और प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ मजेदार क्रिएटिविटी यानी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, जैसे फायरलेस कुकिंग, बच्चों के साथ मिलकर सैंडविच, फ्रूट चाट, लेमनेड और ओरियो शेक जैसी चीजें बनाएं। क्योंकि फायरलेस है, इसमें बच्चों को खतरा नहीं है कि वो जल सकते हैं, उन्हें किचन की बेसिक समझ हो जाएगी। DIY और क्राफ्ट, पुराने सामान से कुछ नया बनाना, पेंटिंग या क्ले मॉडलिंग, आप घर की एक दीवार को उनके आर्ट वर्क के लिए रख सकते हैं कि बच्चे आप जो बनाओगे ना इस दीवार पे लगाया जाएगा। बनाइए, लगाइए अपनी क्रिएटिविटी और बनाइए। किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, छोटे गमलों में धनिया, पुदीना और एलोवेरा लगाना सिखाएं, बच्चों को पानी देने की जिम्मेदारी दें, धूप में रखने की जिम्मेदारी दें, बच्चों को गार्डनिंग की समझ आएगी। बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं,

पेंटिंग या क्ले मॉडलिंग। आप घर की एक दीवार को उनके आर्ट वर्क के लिए रख सकते हैं कि बच्चे आप जो बनाओगे ना इस दीवार पे लगाया जाएगा। बनाइए, लगाइए अपनी क्रिएटिविटी और बनाइए। किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, छोटे गमलों में धनिया पुदीना और एलोवेरा लगाना सिखाएं। बच्चों को पानी देने की जिम्मेदारी दें, धूप में रखने की जिम्मेदारी दें, बच्चों को गार्डनिंग की समझ आएगी। बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, स्क्रीन फ्री मनोरंजन कर सकते हैं, मतलब कि जैसे लूडो कैरम चेस बिजनेस जैसे खेल दोपहर के समय के लिए बेहतरीन है। ये मत सोचिएगा कि बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया या टीवी में लगा दिया, स्क्रीन फ्री मनोरंजन बहुत जरूरी है आज के समय में। कहानी सुनाना, अपने बचपन की कहानियां दादी नानी की कहानियां सुनाएं, यानी उसी समय को वापस ले आएं जो बीत चुका है। हमारी दादी नानी हमें कहानियां सुनाती थी ना, कब कहां इतना स्क्रीन देखते थे, होता ही नहीं था कुछ भी, तो वो समय आना चाहिए। इससे बॉन्डिंग बढ़ती है, बच्चे को भाषा का ज्ञान होता है, उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। घर को ठंडा और खुशनुमा रखें, इंडोर पिकनिक मनाएं, लिविंग रूम में चादर बिछाकर पिकनिक जैसा माहौल बनाएं, साथ में पसंदीदा स्नैक्स बनाएं और बच्चों के साथ गप्पे मारे को ढेर सारे। पानी का खेल खेलें, शाम के समय बालकनी आंगन में टब में पानी भरकर छोटे छोटे बच्चों के साथ मस्ती की जा सकती है। आजकल तो बड़े बड़े जो ये जो पानी में टब आ रहे हैं जिसमें बच्चे आप आराम से खूब एंजॉय करते हैं। स्किल डेवलपमेंट भी होती है, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो कोडिंग पेंटिंग या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सिखाया जा सकता है। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं और ऑफलाइन भी हैं। बच्चों के लिए एक डेली रूटीन जरूर बनाना चाहिए जिसमें जल्दी उठना, थोड़ा होमवर्क करना, थोड़ा खेल का समय, इससे वो अनुशासित रहेंगे और बोर भी नहीं होंगे। समर कैंप भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और ट्रेन में कहीं घुमाइए, ट्रेन का मजा लीजिए और बच्चों को सफर का आनंद ले कहीं घूमने निकल जाइए।

ये गीत आप सुन रहे हैं आशा भोसले की आवाज में अनोखा रिश्ता फिल्म से। अब गर्मियों की बात चली गई है तो गर्मियों में घर को ठंडा रखना भी एक बहुत बड़ी अब देखिए बच्चे घर में रहेंगे, आप भी घर में हैं, अब घर को ठंडा कैसे रखा जाए। पूरा टाइम एसी चलाना ना तो सेहत के लिए अच्छा है ना कि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। बढ़ती गर्मी से आप परेशान हैं, तपती धूप में कहीं बाहर जाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो दिन भर से तपे घर में चैन की सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तेज धूप के कारण दीवारें भी तप रही हैं, घर का तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसा करते हैं घर की दीवारों पर जिन पर सीधी धूप पड़ती है उन्हें हरे नेट से ढक दें या शेड लगवा दें। दीवारों को धूप में गर्म नहीं होने देना है ताकि घर का तापमान न बढ़ पाए। घर की बाहरी दीवारों पर हीट प्रूफ पेंट करवाने से भी तापमान कम हो सकता है। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आप गर्मी में घर को ठंडा रख सकती हैं। गर्मी के दिनों में भारी पर्दे लगवाने चाहिए। गहरे रंग के पर्दे तेज सनलाइट को गर्म हवाओं को कमरे में आने नहीं देते जिससे कमरे का तापमान कम रहता है। घर के अंदर इंडोर प्लांट्स भी लगाइए, पौधे के अंदर तापमान को कम करने में मदद भी मिलती है। ठंडे पानी से दो बार घर में पोंछा भी लगाना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। घर साफ रहता है तो मौसम और तापमान कमरे का ना ठीक रहता है, आपको भी अच्छा लगता है। साधारण पीले बल्ब जो है बहुत गर्मी पैदा करते हैं, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कीजिए, ये ठंडे होते हैं।

कपड़ों का प्रयोग कीजिए, बेडशीट तकिए कवर सिर्फ सूती ही करें। थोड़ी छोटी छोटी टिप्स हैं जिसे आप इस्तेमाल करके घर को ठंडा रख सकती हैं और खुश रह सकते हैं।

0: रफू चक्कर फिल्म में ये आपने सुना आशा भोसले और उषा मंगेशकर को। कार्यक्रम घर आंगन से अब राधा पाठक को दे इजाजत, नमस्कार। घर आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यावसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।

0: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in Denmark in 2022. Earlier, Prime Minister Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement.
2: EFTA countries se Bharat mein agle 15 varshon mein $100 billion investment aur 1 million jobs create karne ka lakshya hai. Ye ambitious target hai lekin achievable hai. और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, यह हमारी गारंटी है।
1: India and Sweden have emphasized that cooperation will define the pathway to shared prosperity and a sustainable future at a moment of global uncertainty. In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, it was highlighted that at a time of growing geopolitical uncertainty, energy insecurity and economic fragmentation,

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है दोपहर के 1:11 और 6 सेकंड्स। मैं आपका रेडियो हमसफर राम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में। आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मशहूर लेखक, अभिनेता, फिल्म निर्देशक और नाटककार गिरीश कर्नाड की, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी, सफल निर्देशन किया और अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। आज गिरीश कर्नाड जी का जन्मदिन है तो आज हम बात करेंगे उनकी जीवन यात्रा की और आपको सुनवाएंगे उनसे जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से।

दोस्तों, गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को माथेरान महाराष्ट्र में हुआ था। एक कोंकणी भाषी परिवार में जन्मे कर्नाड ने 1957 में थारवाड़ स्थित कर्नाटक विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। गिरीश कर्नाड पढ़ाई में काफी रुचि रखा करते थे। अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए एक रोड्स स्कॉलर के रूप में वो इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र, राजनीतिक

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर लेखक, अभिनेता और निर्देशक गिरीश कर्नाड की। कर्नाड की प्रसिद्धि एक नाटककार के रूप में ज्यादा रही। कन्नड़ भाषा में लिखे उनके नाटकों का अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। वे कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन किया करते थे। खास बात यह भी है कि जिस वक्त उनके समकालीन लेखकों के बीच ऐसी चीज के बारे में लिखने की होड़ थी जो स्थानीय लोगों के लिए बिल्कुल नई हो, ऐसे में कर्नाड ने उनसे अलग हटकर ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों से तत्कालीन व्यवस्था को दर्शाने का तरीका अपनाया और काफी लोकप्रिय हुए और सफल भी रहे। उन्होंने

अपना पहला नाटक ययाति 1961 में लिखा। उसके बाद 1964 में तुगलक नाटक की रचना की। तुगलक एक ऐसा नाटक था जिसने कर्नाड को काफी प्रसिद्धि दिलाई और इसका कई भाषा में अनुवाद भी किया गया। उनके द्वारा लिखा गया तले दंड भी काफी फेमस हुआ, जिसका हिंदी में अनुवाद रक्त कल्याण के नाम से किया गया। निर्देशक इब्राहिम अलकाजी और बाद में अस्मिता नाट्य संस्था द्वारा इस नाटक के 1954 से लेकर 2009 तक 150 से ज्यादा मंचन भी किए गए।

दोस्तों बात करें गिरीश कर्नाड के अभिनय और निर्देशन की, तो वंश वृक्ष नामक पहली कन्नड़ फिल्म थी जिससे इन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। हिंदी फिल्म उत्सव का निर्देशन भी इन्होंने ही किया था। बात करें इनके अभिनय की, तो 1975 में आई फिल्म निशांत, 1976 में आई फिल्म मंथन और जीवन मुक्त और एक था टाइगर जैसी फिल्मों में इनके अभिनय को काफी सराहा गया। दोस्तों 80 के दशक में आया मशहूर टीवी सीरियल मालगुडी डेज को कौन भूल सकता है। इसमें स्वामी के पिताजी का रोल गिरीश कर्नाड ने ही निभाया था।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों, बात करें गिरीश कर्नाड की उपलब्धियों की तो उसकी एक लंबी कतार है, जिसमें मुख्य रूप से सन 1972 में नाटक तुगलक के लिए इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1974 में पद्मश्री से, 1992 में पद्म भूषण तथा कन्नड़ साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1994 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार और 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। बात करें हिंदी सिनेमा की तो 1980 में फिल्म फेयर पुरस्कार और इसके अलावा इन्हें कई राज्य स्तरीय और

दोस्तों, गिरीश कर्नाड ने वो शोहरत हासिल की जो कई कलाकारों के लिए सपना होती है। 10 जून सन 2019 को 81 वर्ष की आयु में इस महान कलाकार ने दुनिया

ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री अंटू कुमार दास और सुश्री शिखा डेका। मोनपा में उद्घोषक हैं श्री संगे टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

मिलीमीटर 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ तथा 104 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 मई महीने की 19 तारीख दिन है मंगलवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री तंजिन दोरजी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री कामे यांगफो और श्री तानिंग ताको।

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: districts across the state are experiencing severe heat wave conditions, with maximum temperatures hovering near or crossing the 45 degree mark. The Indian Meteorological Department has issued a heat wave alert for 33 districts and advised people to remain cautious, especially during afternoon hours. Heat wave conditions will prevail in the southern and central parts of the state for the next 1 week, while whole state will have hot nights for the next 2 days. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: IMD has also forecast heat wave to severe heat wave conditions in Madhya Pradesh today. Heat wave conditions are likely to prevail over Bihar and Marathwada during the day and over Punjab, Haryana, Chandigarh for the next 5 days. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.2% up in afternoon trade today. The Sensex rose by 136 points to 75,451, while the Nifty added 42 points to 23,692 when reports last came in. PM. Last night, Sunrisers Hyderabad confirmed its place in the playoff, defeating Chennai Super Kings by 5 wickets at M.H. Chidambaram Stadium. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend 3rd India-Nordic Summit in Oslo, aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defence and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilized or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टोन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
3: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
2: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्ध

0: और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
1: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसी कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्व

0: पूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
1: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
2: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
1: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
3: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
4: आज भी राज्य

0: भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक के वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे ग्यांगोंग मठ के आनी केजांग और साथी भिक्षुणियों की आवाजों में चंद बौद्ध भक्ति भजन। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत आनी के जांग और साथी भिक्षुणियों के आवाजों में चंद बौद्ध भक्ति भजन आकाशवाणी के तवांग केंद्र से जारी है कार्यक्रम वंदना।

0: अनिकेजांग और साथियों के इन्हीं बहुत भक्ति भजन के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। आइए अब आनंद लेते हैं अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत का। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में चंद आधुनिक बंगाली नगमे। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत लता मंगेशकर की आवाज में चंद आधुनिक बंगाली नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। जारी है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: लता मंगेशकर की इन्हीं आधुनिक बंगाली नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 8वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी देवी प्रधान से बुनाई और हस्तशिल्प की कला विषय पर एक वार्ता।
1: तरस जाते हैं रंग जब हाथों से कला निखरती है, मिट्टी और धागे से रूहानियत ठहरती है। नजाकत, सलीका और मेहनत का अद्भुत संगम हस्तशिल्प की हर कृति सलीके से सवारती है। आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूँ देवी प्रधान, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग 8वीं की छात्रा। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय बुनाई और हस्तशिल्प की कला है। हस्तशिल्प मनुष्य की रचनात्मकता और कल्पना का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है जो किसी मशीन की मोहताज नहीं होती। यह हाथ से बुनाई गई वस्तुओं की कला है जो सदियों से हमारी संस्कृति, सभ्यता और दैनिक जीवन का अभिन्न अंग रही है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में हस्तशिल्प न केवल कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम है बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन भी है। हस्तशिल्प के अंतर्गत मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी, आभूषण और खास तौर पर बुनाई जैसी विधाएं आती है। बुनाई केवल धागों को जोड़ने की कला नहीं है बल्कि यह प्यार, धैर्य और परंपरा को एक धागे में फिरोने का अनुभव है। भारत प्राचीन काल से ही कला और शिल्प की भूमि रहा है। यहाँ की बुनाई और हस्तशिल्प की कला विश्व प्रसिद्ध है। ये कलाएं न केवल हमारी संस्कृति की पहचान है बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का साधन भी है। हस्तशिल्प की कला में मिट्टी, लकड़ी, धातु, कपड़ा और पत्थर जैसे वस्तुएं से सुंदर और उपयोग चीजें बनाई जाती है। मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी, धातु की मूर्तियां और कढ़ाई वाले वस्त्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यह वस्तुएं हाथों से बुनाई जाती है इसलिए इनमें कारीगर की मेहनत और भावना झलकती है। हस्तशिल्प का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के शिल्प प्रसिद्ध है। वस्त्र और बुनाई जैसे कश्मीर के ऊनी शॉल, पंजाब की फुलकारी और हाथ से बुने गए स्वेटर। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी को मनचाहा आकार देकर कलात्मक रूप देना। लकड़ी का काम, नक्काशीदार फर्नीचर और खिलौने। लोक चित्र जैसे मधुबनी पेंटिंग, वार्ली पेंटिंग जो दीवारों और कपड़ों पर की जाती है। बुनाई चाहे वह सिलाई से हो या क्रोशिया से, हाथों की एक अत्यंत सूक्ष्म कला है। जब धागे को

जब तक है जान फिल्म से अभी आप सुन रहे थे गुलजार का लिखा नगमा, स्वर नीति मोहन के और संगीत एआर रहमान का। श्रोता नारी संगीत कार्यक्रम का अंतिम नगमा पेश है दोस्ताना फिल्म से शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी की आवाजों में। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

0: दोस्ताना फिल्म के इस गीत के साथ ही महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत अब समाप्त होता है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:51 हुए हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी।

श्रोताओं, गीतमंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए कबीर सिंह फिल्म से अरमान मलिक के आवाज में, बोल इरशाद कामिल के और संगीत विशाल मिश्रा का।

अगला नगमा पेश है अखिल सचदेव और मंशील गुजरल की आवाजों में। बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म के इस गीत के बोल एवं संगीत रचयिता है अखिल सचदेव।

बजरंगी भाईजान फिल्म से सुनिए अगला नगमा अति वसलम के आवाज में। प्रीतम द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे तू झूठी में मक्कार फिल्म का नगमा, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के तथा संगीतकार प्रीतम। श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत फिल्म जगत के चंद नव गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए गुड बाय फिल्म से अमित त्रिवेदी के आवाज में। स्वानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है अमित त्रिवेदी ने।

राब्ता फिल्म से पेश है अगला नगमा अरिजीत सिंह के आवाज में। प्रीतम द्वारा संगीतित इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए रॉय फिल्म से अरिजीत सिंह और अदिति सिंह शर्मा की आवाजों में। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है अमाल मलिक ने।

तमाशा फिल्म से भी आप सुन रहे थे गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम नगमा मोहित चौहान और साथियों के आवाजों में, बोल इरशाद कामिल के और संगीत एआर रहमान का। इसके साथ ही श्रोताओं, फिल्म जगत के नवगीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय शाम के 4:30 हो रहे हैं। चलिए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत अनंत लाल से शहनाई वादन, राग है बसंत भैरवी।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे बसंत भैरवी राग पर अनंत लाल से शहनाई वादन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से चंद पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

संस्था के करीब है। उन्होंने कहा कि बैठक में संस्थागत विकास योजना को अद्यतन करने, सभी संस्थानों के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्थानांतरण रोड मैप तैयार करने जैसी प्रमुख प्राथमिकताओं को दोहराया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर एक वर्चुअल प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सैनी ने बताया है कि SIR का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूचियों को शुद्ध, सटीक और समावेशी बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक छूटा न रह जाए और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो पाए। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित कर उन्हें SIR की जानकारी देने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों के अपने अपने जिला दलों के साथ SIR पर समन्वय बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने

निर्देश भी जारी किए। अरुणाचल प्रदेश की रूबी लोम्बो ने इतिहास रचते हुए राज्य की पहली माउंटेन ट्रेन बाइक एमटीबी कोच बनने का गौरव प्राप्त किया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसएआई द्वारा एशियन माउंटेन बाइक चैंपियनशिप 2026 ताशकंद उज्बेकिस्तान के लिए टीम इंडिया के चयनित की गई है। वे राज्य की एकमात्र महिला कोच है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें बधाई देते हुए आगामी एशियन एमटीबी चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया की सफलता की कामना की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीका

0: में भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें अब 98.64 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमतें 11.98 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 प्रति लीटर बिक रही है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.700 रुपए दर्ज की गई है जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हॉर्मुज जलमग्न मुखिया के रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए भारी तेजी के बाद की गई है। अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और 3 वनडे मैचों के लिए भारत की टीमों की घोषणा कर दी गई है। विराट कोहली रोहित शर्मा वाली वनडे टीम में प्रिंस यादव को पहली बार जगह मिली है। केएल राहुल को टेस्ट टीम का उपकप्तान बनाया गया है। जसप्रीत बुमराह को दोनों ही सीरीज से आराम दिया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया था। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार में संविदा सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451 जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर आ गया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Apu Gapak. Prime Minister Narendra Modi reached Norway yesterday after completing his visits to UAE, the Netherlands and Sweden. Last evening, he attended the India-Norway Business and Research Summit with Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of trade and economic partnership agreement. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 million under and the consequent creation of 1 million jobs in India. Prime Minister Modi will travel to Italy today on the 5th and final leg of his 5-nation tour. India and Sweden have emphasized that cooperation will define the pathway to shared prosperity and a sustainable future at present of global uncertainty. In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, it was highlighted that at a time of global uncertainty, energy insecurity and economic divisions, the world must choose between working alone or strengthening international partnerships. In the article published today in National Daily, both the Prime Ministers noted that as the United Nations marks its 80th anniversary, the value of international cooperation and multilateralism has become even more evident. They emphasized that at the same time, the need to reform global governance institutions to reflect contemporary realities has become impossible to ignore. Both the leaders mentioned that a rules-based international order anchored in international law and sovereign equality has helped create decades of stability and development. The Delhi High Court today sought response from AAP leaders including Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, Sanjay Singh and Saurabh Bharadwaj in a criminal contempt case over alleged social media posts against Justice Swarana Kanta Sharma. A bench of justices, Navin Chawla and Ravinder Dudeja, issued notices and granted 4 weeks to file replies. The matter will be heard on 4th August this year. A high-level meeting of the Central Zonal Council has started at Jagdalpur in Chhattisgarh. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah is chairing the meeting. Chief Ministers of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand and Chhattisgarh are participating in the 26th meeting of the Central Zonal Council. Union Home Secretary, Director of the Intelligence Bureau, Directors General of Police of the 4 states along with senior police and administrative officials are also attending the meeting. Army Chief General Upendra Dwivedi has said Operation Sindoor delivered military precision, information control, diplomatic signaling and economic resolve as one coherent national act.

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में पहले सुनिए एक जरूरी सूचना। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय तवांग द्वारा जारी परामर्श के अनुसार सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस एंड हिमालयन स्टडीज अरुणाचल प्रदेश द्वारा खंगरी ग्लेशियर मागोचू के आसपास ग्लेशियर झील फटने से आने वाली बाढ़, भूस्खलन एवं अन्य खतरों की हालिया चेतावनी के मद्देनजर सभी निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। मागोचू, तवांगचू और आसपास के निचले इलाकों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और मलबे के बहाव का खतरा हो सकता है, विशेष रूप से लगातार बारिश और खराब मौसम के दौरान। अतः आम जनताओं, ग्रामीणों, यात्रियों, मजदूरों, पर्यटकों एवं सैन्य प्रतिष्ठानों सहित सभी एजेंसियों को इन एहतियाती उपायों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश या खराब मौसम के दौरान नदी तटों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों एवं संवेदनशील इलाकों के पास अनावश्यक आवाजाही से बचें। जल स्तर में अचानक वृद्धि, ऊपरी क्षेत्रों से आने वाली असामान्य आवाजों या भूस्खलन के संकेतों पर सतर्क रहे और तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उफनती नदियों, नालों या क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों को पार करने का प्रयास न करें। ग्राम अधिकारियों और स्थानीय नेताओं से अनुरोध है कि वे इस परामर्श को निवासियों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित करें और जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखें। सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों से अनुरोध है कि वे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी आपातकालीन प्रतिक्रिया और निकासी के लिए तैयार रहें और किसी भी आपात या संदिग्ध स्थिति के मामले में तुरंत निकटतम प्रशासनिक कार्यालय, पुलिस या आपदा प्रबंधन अधिकारियों को सूचित करें। जिला प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों से शांत रहने, अफवाहें न फैलाने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया है। सूचना समाप्त हुआ। चलिए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर कार्यक्रम शेदोन देर में सुनिए गेलोंग दुर्जी नामगे और भिक्षु गणों के आवाजों में चंद बौद्ध भक्ति भजन। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता में सुनिए एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय तवांग के 4th कक्षा की छात्रिका कुमारी केजर सोमू कार्लो से एक अंग्रेजी कविता। फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आनंद लीजिए फूल और कांटे फिल्म के चंद नगमे आज शाम 7:11 पर। आज शाम 7:25 पर साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोक में सुनिए जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी तवांग श्रीमती गेंदन सोमू से मॉनसून मौसम में किसी भी अप्रत्यक्ष घटनाओं से बचाव हेतु क्या करे और क्या ना करे विषय पर हुई भेंट वार्ता। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमीय तराने में सुनिए लता मंगेशकर और आदिनाथ मंगेशकर से एक देशभक्ति गीत। रात्रि 8:00 आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 20 मई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाने की तरह कल दोपहर 2:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए गुलशन कुमार प्रस्तुत चंद शिव भक्ति भजन कल दोपहर 2:30 पर। चंद आसामिया बिहू नगमों का आनंद लीजिए पापुन और रेशमी रेखा के आवाजों में कल 2

दोपहर 3 बजे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात में सुनिए जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 11वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी पेमा छुकी से एक वार्ता। महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत में सुनिए क्वीन फिल्म से अमित त्रिवेदी, जब हैरी मेट सेजल फिल्म से सुनिधि चौहान और शाहिद मालिया, केदारनाथ फिल्म से देव नेगी और ये जवानी है दीवानी फिल्म से रेखा भरद्वाज और विशाल ददलानी की आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे कल दोपहर 3:33 पर। कल दोपहर 3:50 पर कार्यक्रम गीत मंजरी में आनंद लीजिए अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से अतीफ असलम, नोटबुक फिल्म से कमाल खान, सत्यमेव जयते फिल्म से अतीफ असलम और तुलसी कुमार, मुन्ना माइकल फिल्म से विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान, बैंग बैंग फिल्म से हर्षदीप कौर और बेनी दयाल, टू स्टेज फिल्म से अदिति सिंह शर्मा और अमिताभ भट्टाचार्य, ये जवानी है दीवानी फिल्म से बेनी दयाल और शिफाली आलवरेज, जबारिया जोड़ी फिल्म से यासर देसाई और अल्तमाश फरीदी, केदारनाथ फिल्म से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी और द स्काई स्पिंग फिल्म से अरिजीत सिंह, निखिल डिसूजा और अंतरा मित्रा की आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग में सुनिए श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से खयाल कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। रोजाने की तरह मुनपा कार्यक्रम नमथर लेरिम में सुनिए महामहिम टुल्कू तेंजिन ग्योरमे रिम्पोछे द्वारा बोधिसत्व के जीवन मार्गदर्शन पर आधारित शिक्षाओं का चौथा भाग कल शाम 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में। कल शाम 5:35 पर साप्ताहिक मोनपा कार्यक्रम नांगचुए कालोप लेरिम सेडा शाम 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। बौद्ध भक्ति वंदना का कार्यक्रम जेदुन लेरिम में सुनिए लामा मेथो टाशी और साथियों से चंद बौद्ध भक्ति भजन कल शाम 6:20 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7 बजे तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर सुनिए हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने में सुनिए बॉस द फॉरगॉटन हीरो फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8 बजे व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन रात्रि 8:30 पर तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसके साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मोनपा में। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

Dans ça.

Oh, my name,

0: Lanyinang stada shindun lirima danda bandishiba sagadawa tuzang kibarjin kapka tawang gonbak lobun gelong durjin namgisi uyutsungu tawang gonbak kindunbal hangyeba nangsi chendizek choga nangu dadna sanmechakmar mutuya san nangambur Lanyinang odebwa luntingang tawang tishnubduk manbak lirimba na chazang dudur Lanyi changma nubduk suzay nisongdur Lagina dao shuje na hindi ga segyu nun shuje inji ga segyu lungting gaang te likak su san naang sa.
1: Namaskar, Akashwani Samachar ke saath main Sir Firozi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्डिक साझेदारी का मजबूत स्तंभ है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद नॉर्डिक प्रधानमंत्रियों के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत नॉर्डिक संबंधों में मजबूती आई है।
2: पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है। साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत

0: बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा।
0: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: इससे पहले श्री मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना था। सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा हुई। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्तरून फ्रॉस्टोदॉटर, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेतरी ऑर्पो और डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेता फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीक नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस क्रूर घटना में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 5वें स्थान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीतकर प्लेऑफ की अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi said India and Nordic countries have decided to give their relations the form of Green Technology and Innovation Strategic Partnership. Mr. Modi made the remarks while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic Summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark also took part in the media briefing. Prime Minister Modi said, with this green technology partnership, they will connect Iceland's expertise in geothermal and fisheries, Norway's expertise in blue economy and Arctic, and all Nordic countries' expertise in maritime and sustainability to India's

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:12 हुए हैं। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे फूल और कांटे फिल्म के चंद नगमे। तो चलिए कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं कुमार सानू और अनुराधा पोतवाल के आवाजों में, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

0: फूल और कांटे फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:22 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोक में आज आप सुनेंगे जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी तवांग श्रीमती गेंदेन सोमो से मानसून मौसम के में किसी भी अप्रत्यक्ष घटनाओं से बचाव हेतु क्या करे और क्या ना करे विषय पर हुई भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता है दोर्जी ड्रेमा।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। श्रोताओं आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग तवांग के DGMO यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट तवांग श्रीमती गेंदेन सोमो जी। सबसे पहले गेंदेन सोमो जी आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच।
1: तो गेंदेन सोमो जी आज हमारे इस चर्चा के विषय है नेचुरल कैलोमिटीज यानी प्राकृतिक आपदाएं। वैसे प्राकृतिक आपदाएं तो कभी भी आ सकते हैं लेकिन हमारे तवांग में बरसात के मौसम में ज्यादातर प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना रहता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इस कार्यक्रम के जरिए आपसे प्राकृतिक आपदाएं से बचाव के लिए छोटी छोटी जानकारियां प्राप्त करूं और अपने श्रोताओं के साथ साझा करूं। तो सबसे पहले गेंदेन सोमो जी आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि प्राकृतिक आपदा होते क्या है और इसमें क्या क्या आते हैं।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मौका दिया रूबरू होने के लिए तवांग के वासियों से। तो नेचुरल कैलोमिटीज में आपका सबसे पहले अभी मॉनसून चल रहा है तो आप देखिए इसमें फ्लैश फ्लड होता है, लैंडस्लाइड होता है, लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म होते हैं और फिर विंटर जैसे आते हैं तो आपका फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, वाइल्ड फायर, देखिए पूरा जंगल में आग लग जाना, ये सब हमारे नेचुरल कैलोमिटीज में।
1: जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत लैंडस्लाइड होना, लाइटनिंग्स होना, थंडर स्टॉर्म्स होना या फिर सर्दी के मौसम में फायर एक्सीडेंट्स होना, ये सब आते हैं। तो अभी मॉनसून सीजन है, बरसात के मौसम है, तो हम अभी के जो स्थिति है इस पर ज्यादा ध्यान देते हुए हमारे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लोग बरसात के मौसम है कहकर अपने काम छोड़कर घर पर बैठे भी नहीं रह सकते हैं, तो उन्हें बाहर जाकर काम करने के लिए जो नेचुरल कैलामिटीज होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होते हैं, इससे बचाव के लिए डूज एंड डोंट्स यानी उस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि अगर किसी को ऐसा स्थिति से गुजरना पड़े तो उस समय अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
2: इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट से टाइम टू टाइम एडवाइजरी जारी किया जाता है। ये हो सके तो आपका लैंडस्लाइड जोन है, नालाज है और या फिर हमारे सिंकिंग जोन्स है, क्वारी साइड है, ये सब हमारे वल्नरेबल्स हैं जिसमें आपको अवॉइड करना चाहिए। इसमें जाना जितना हो सकता है आप अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बारिश के दौरान देखिए जैसे जमीन हमारा गीला रहता है।

0: होता है, जहां पे पेड़ का कटाव ज्यादा होता है तो वहां पे आपका वल्नरेबल ज्यादा होता है, लैंडस्लाइड ज्यादा होता है, जिसके कारण जैसे पेड़ कटने की वजह से आपका क्या होता है, फ्लैश फ्लड आते हैं। तो फ्लैश फ्लड इसलिए आते हैं क्योंकि आपने पेड़ काट दिया एंड देन उनका जड़ जो काम करना छोड़ देता है, तब जाके आपका डेब्रिस पूरा लेके आते हैं, हमारा फ्लैश फ्लड बोलते हैं। तो ये सब एरिया है जिसको आप अवॉइड करना है ड्यूरिंग मानसून। और शायद ज्यादातर यहाँ पे तो नाला या फिर बड़ा बड़ा ये रिवर्स हमारे यहाँ पे नहीं है, अगर हो सके तो उस समय इसमें भी हम लोगों को जाना नहीं चाहिए। फिशिंग होगा आपके, मछली पकड़ना या फिर आपका नहाना या फिर पिकनिक, इस समय इस दौरान आप जितनी हो सके इसको आप अवॉइड कीजिए। एसेंशियल कॉमोडिटीज जो होते हैं, देखिए राशन आपका ड्राई जो जो हम रख सकते हैं, जो स्टॉक में हम लोग रख सकते हैं, मैं हर घर से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा एसेंशियल कॉमोडिटीज को आप स्टॉक में रखिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे तवांग आना मीन्स आप एक रास्ता से होना है, तो इसमें हम लोगों का राशन अपना घर में होना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपका बारिश बहुत ज्यादा होता है तो जैसे बिजली हमारी चली जाती है, तो हो सके तो अपना मोबाइल आप चार्ज रखिए, या फिर आप पहले तो हम बहुत टॉर्च लाइट वगैरह रखते थे, पता नहीं आजकल रखते ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि टॉर्च लाइट भी हम रखें घर पे, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ड्यूरिंग मानसून। और हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कि क्वारी बहुत ज्यादा है जिसमें तो निचला स्तर से हम पत्थर तो निकलते जाते हैं, अगर ऊपर स्तर को हमने इग्नोर कर दिया तो वहां से लैंडस्लाइड होने का बहुत चांसेस है। तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस दौरान कुछ कुछ जगह है जैसे आपका क्वारी साइड हो गया, नालाज हो गया, तो इस सब को आप थोड़ा सा अवॉइड। तो ये रहा आपका मॉनसून के दौरान जो एडवाइजरी होता है। फिर आपने पूछा कि मुझे लाइटनिंग और थंडरिंग के ऊपर में तो इसमें आपका जितना हो सके प्रिक्वेशंस में ये है कि हम लोगों का एक मेंटेलिटी है, लोगों का एक मेंटेलिटी है कि अगर लाइटनिंग होता है या फिर थंडरिंग होता है तो बड़ा बड़ा पेड़ के सामने जाके हम रुक जाते हैं, मतलब शेल्टर हम वहां पे लेते हैं, तो वो हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि लाइटनिंग और थंडरिंग जो होता है वो हम लोगों को सबसे ऊंचा चीज में, सबसे जो टॉलेस्ट होता है उसमें अट्रैक्ट करते हैं, तो उस वजह से हम इंसान को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचते हैं। अभी खेती का सीजन भी है तो खेती में भी बहुत सारा हमारा लोग रहते हैं, तो उनसे मेरा एक गुजारिश है कि खाली पांव जो हम लोग खाली पांव जो जमीन पे काम करते हैं ना, उस वो ना करें, हो सकेगा तो प्लास्टिक का गम्बूट जैसे हम लोग कहते हैं तो उसको आप पहन के ही काम कीजिए, ताकि आपको जो ये करंट है वो आपके बॉडी पर असर ना करे। तो हो सकेगा तो कुछ भी आप नेचुरल कैलिमिटी को देख लीजिए, तो हम लोगों को वार्निंग्स मिलता है, जैसे आपका थंडर स्टॉर्म आना है तो आपको हल्का सा लाइटनिंग आपका पहले होगा तो कुछ, हाँ जी हाँ जी, तो उस बीच में आप हो सकेगा तो आप सेफ प्लेस में चले जाइए। अगर आप फील्ड में ही है और बिल्कुल आप यहाँ से वहां कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करना है कि आपका सर को दोनों टांगों के बीच, दोनों पांवों के बीच में जितना हो सके नीचे झुक के, मीन्स अपने आप को बॉल साइज में बोलते हैं एक्सपर्ट्स जो बताते हैं, तो बॉल साइज में अपने आप को करके जितना हो सके नीचे झुक जाना चाहिए, ताकि जो लाइटनिंग होगा, लाइटनिंग का भी एक करंट पास होता है, तो वो आपको इफेक्ट ना करे, तो ऐसा बोला जाता है। तो मैं लोगों से वही गुजारिश करूंगी कि इस तरह का प्रिकॉशंस जो टाइम टू टाइम हम बताते हैं तो उसको अमल करें। और एक है जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जैसे हम बहुत चीप वाला भी यूज कर लेते हैं ना, तो पैसा बचाने के लिए, तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ अच्छा चीज जो ISI मार्क वाला यूज करें। और इनकेस थंडरिंग या फिर स्टॉर्म जैसे हमारा लाइटनिंग होता है, तो उस समय में क्या करना चाहिए आपको, लोगों को सब मेन प्लग्स जो बोलते हैं ये जो तार जो हमारा लगा हुआ होता है, तो उस सबको निकाल देना चाहिए। अगर उस समय आप एक एक चीज को आप निकाल नहीं पाते हैं, तो आपका घर में एक मेन स्विच होता है जो आप पूरा फैमिली मेंबर्स को बताइए कि ये मेन स्विच है, तो मेन स्विच को आप ऑफ कर देने से भी आपका बहुत सारा जान माल का नुकसान कम हो जाएगा।
1: जी जी, आजकल लोग इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि घर के सारे काम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जरिए करते हैं, तो इससे कई सारे फायदे भी हैं, लेकिन साथ साथ कई सारे खतरे भी जुड़े होते हैं। तो जैसा कि अभी आपने बताया, अगर जब भी लाइटनिंग होते हैं तो आप एक एक पॉइंट से प्लग ऑफ करने से बेहतर सीधे जाकर जहां मेन स्विच होते हैं वहां से ऑफ कर दें।
0: जी, जैसे कि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा ये आपका मोबाइल्स यूज करते हैं ना, जो लाइटनिंग और थंडरिंग के समय में मोबाइल्स को आप अवॉइड कीजिए। और बच्चे आजकल ज्यादातर क्या करते हैं कि आपका ईयरफोन बहुत यूज करते हैं, ईयरफोन यूज करते हैं, या फिर वायर वाला ईयरफोन होगा या फिर वायरलेस वाला ईयरफोन, हाँ जी, तो ये ईयरफोन्स आपका थंडरिंग और लाइटनिंग के दौरान बहुत ज्यादा खतरा होता है, जिससे हमारे जान भी जा सकता है। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने बच्चों को जब भी लाइटनिंग होता है तो ये मोबाइल

0: मोबाइल्स हो गया आपका या फिर ईयरफोन्स हो गया, उसको अवॉइड करने के लिए सलाह देते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, जैसा कि अभी आपने सुना, प्राकृतिक आपदा के दौरान अगर आप कहीं जगह पे फंस जाते हैं और आपके पास कोई और चारा नहीं होते हैं, तो उस समय आपको अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे डीजे मोतवांग किंदन समूह जी ने आपको बताया और हम आशा करते हैं आप सब इससे पालन भी करेंगे। तो गेंदन समूह जी, हमारे इस चर्चे को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे और भी एक चीज जानना चाहेंगे कि आप तवांग में पोस्टिंग आने से पहले आप ईस्ट सियांग पासीघाट में पोस्टेड थे, तो अभी तक आपके पास हमारे तवांग के लोग प्राकृतिक आपदा से हुए कौन सी घटनाओं को लेकर आए हैं और अगर कोई आते हैं तो आप उनके लिए क्या करते हैं?
0: हाँ जी, लैंडस्लाइड का थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, लैंडस्लाइड को लेके, उस प्रॉब्लम को लेके हमारे पास आते हैं। और आपका यहाँ पे गाय, हमारे बहुत सारा लोग पालते हैं तो गाय जो एपिडेमिक होके जो गुजर जाते हैं उसका रिलीफ हम यहाँ पे देते हैं। और दूसरा जैसे आपका क्रॉप डैमेजेस हो गया, जैसे मैं इस सियांग में थी तो वहाँ पे क्रॉप डैमेजेस बहुत ज्यादा होते हैं और अभी मानसून के सीजन में तो वहाँ पे आपका क्रॉप डैमेज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। प्लस वहाँ पे बहुत छोटा छोटा नाला जो है अभी जो मानसून में बहुत बड़ा नदी बन के आता है। आपने सुना भी होगा कि वहाँ पे एक बहुत फेमस रिवर है जो सियांग, तो सियांग जो इस समय फुल स्पीड में होते हैं, बहुत ज्यादा उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आपका पानी जो छोटा छोटा जो नाला थे वो इतना बढ़ जाता है कि पानी एक जगह पे आके रुक जाता है, इनअंडेटेड हो जाता है, तो घर पूरा डूबा वहां पे रहता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। हम तवांग में खुश नसीब है जो हमारे यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है।
1: जी, जब आपसे प्राकृतिक आपदाएं से जुड़े ही बातें हो रही है तो आपसे और एक सवाल करना चाहूंगी, जैसे यहाँ के घरों के आसपास हर जगह अभी के समय में लैंडस्लाइड आने की ही संभावना है या फिर ज्यादा बरसात होने के कारण इलेक्ट्रिक पोल्स गिर सकते हैं या फिर किसी के साथ ऐसी घटना अगर रात को घटती है तो वह तुरंत अगर सरकार की मदद लेना चाहेंगे तो किससे हम संपर्क कर सकते हैं, आपसे यानी डीडीएम मोतवांग से या फिर अन्य कौन सी विभाग से हम संपर्क कर सकते हैं?
0: हाँ जी, सबसे पहले तो इसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर हूं, तो बिल्कुल आप संकोच ना करें, मेरे फोन पे एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद तुरंत जिसको कौन सा विभाग का है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो एनी टाइम डे और नाइट, रात हो या दिन हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा असिस्टेंस आप लोग ले सकते हैं।
1: जी,
0: तो मैं अपना फोन नंबर भी मैं दे देती थी।
1: जी,
0: तो मेरा नंबर है 9436053326। और कोई नेचुरल कैलेमिटी होता है तो आप किसी से भी संपर्क करने में संकोच ना करें, आप डीसी साहब को डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, एसपी साहब को कर सकते हैं, हमारे एडीसीज को कर सकते हैं, सभी जो आपका सर्कल ऑफिसर्स हैं उनको भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं।
1: जी हाँ, और देखिए अभी के समय में तो फायर एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं समर सीजन में, तो लेकिन सर्दी के मौसम में कुछ जगहों पे कई लोग जंगल जला देते हैं या फिर खेत को जला देते हैं, तो उस समय किसी के साथ एक्सीडेंटली किसी के घर जल जाते हैं तो किसी के फसल जल जाते हैं, या फिर समर सीजन में भी इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से किसी के घर जल जाते हैं, तो उनके लिए आपके डिपार्टमेंट द्वारा क्या करते हैं?
0: हाँ जी, जैसे ये फायर एक्सीडेंट होता है तो उसमें एक घर जल जाने पे हमारे नॉर्म्स के मुताबिक 1,00,000 का आपको असिस्टेंस दिया जाएगा। हम कंपेंसेट नहीं करते हैं, हम रिलीफ देते हैं, तो उसमें आपका ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्री में काम करते हैं, पोस्ट को हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह बहुत देते हैं जिसमें लोगों को अमल करना चाहिए एक्चुअली, तभी जाके आपका जान माल का नुकसान कम होगा। और आपने बोला कि जैसे झूम खेती के लिए हमारे जंगल जो जला देते हैं, वो अभी आपका गवर्नमेंट का रूल्स के मुताबिक भी ये आपका क्राइम है, आपको नहीं करना चाहिए। लाइक खेती भी करता हो तो कुछ एरियाज को आप वाइल्ड फायर जिसको बोलते हैं हम लोग, ऐसा हो जाता है, तो जितना हो सकता है उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे एटमोसफियर को भी बहुत सारा नुकसान होता है, इन्वायरमेंटल लॉसेस बहुत ज्यादा होता है, जैसे आप देखिए उसमें बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा है तो वो सब, हाँ जी, तो जानवर्स को बहुत तकलीफ होता है। तो मैंने एक बार देखा भी था कि एक जैसे बच्चे लोग भी उसकी चपेट में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो ये सब का हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो देखिए आपका कुछ भी एडवाइजरी, हर किसी के पास में आपका मोबाइल होता है, सोशल नेटवर्क आजकल इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आप डूज एंड डोंट्स कहीं भी कोई सा भी आप साइट में आप जाके ढूंढ लीजिए, आपको डूज एंड डोंट्स कोई सा भी डिजास्टर के ऊपर में आपको मिल जाता है। तो लोगों से मैं गुजारिश करूंगी कि कभी डूज एंड डोंट्स को भी आप पढ़ लीजिए, जो आपका हित के लिए जो होते हैं उसका आप फायदा जरूर उठाइए। मैंने ये देखा है कि फायर एक्सीडेंट किस वजह से होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे

0: रिस्क ज्यादा है, तो यहाँ पे हम जो ट्रेन जो जलाते हैं तो उसको जला के हम हर समय हम नहीं रह पाते हैं, तो हम लोग निकल के चले जाते हैं, तो उस केयरलेस की वजह से भी हमारा फायर एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें घर जल जाते हैं। तो मैं लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि लाइक आप ट्रेन जलाते भी हैं तो उस एक प्लेट में हल्का सा पानी डाल के रखें, और बच्चों को ये आपका मैच बॉक्सेस जो आप माचिस के डिब्बा जिसको बोलते हैं हम ना, माचिस या फिर लाइटर, ये सब बिल्कुल खेलने के लिए ना दें, जिस वजह से बच्चों को तो पता नहीं होता है कि वो खेलते हैं एंड देन आपका आग लग जाता है, जिस वजह से भी हमारा फायर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है।
1: जी जी, बिल्कुल सही कही है आपने। और देखिए, हर साल एनडीआरएफ ईटानगर से एक्सपर्ट्स आते हैं और जगह जगह पर जाकर लोगों को अवेयरनेस देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं और कुछ डेमोन्स्ट्रेट दिखाते हैं। हमने भी देखे हैं जब भूकंप आते हैं तो हमें अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो फिर भी आज मैं इस कार्यक्रम के जरिए आपसे भी इससे जुड़े जानकारियां लेकर अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ जी, लाइक आपको पता है कि पूरा अरुणाचल भूकंप के जोन में आते हैं, जोन 5 में आते हैं, तो जोन 5 मीन्स सबसे ज्यादा रिस्की वाला, तो इसमें अर्थक्वेक में तो सबसे इम्पोर्टेंट है हायर बिल्डिंग्स में आपको नहीं होना चाहिए। अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे स्टोरेज का आपको बिल्डिंग्स डेवलप हो रहा है, तो वो सब अर्थक्वेक के बहुत ज्यादा खतरा है। तो मैं लोगों से भी यही गुजारिश करूंगी कि जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो थोड़ा सा ये आप इंजीनियर से एडवाइजरी ले लीजिए कि किस तरह का बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए जो आपके इनकेस, क्योंकि अर्थक्वेक को हम नहीं रुका सकते हैं, अर्थक्वेक तो होना ही है कभी ना कभी दिन, तो उसको हम नहीं रुका सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लोग ले सकते हैं। तो आप जब बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप उसमें कुछ प्रिकॉशनरी लेना है, तो आप एनी डिपार्टमेंट को, जैसे वॉकिंग डिपार्टमेंट है आपका, पीडब्ल्यूडी है, तो उनका इंजीनियर से आप सलाह लें कि किस तरह का स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे होना चाहिए। प्लस हमारे यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो उसमें अर्थिंग बहुत जरूरी होता है, अर्थिंग, तो न्यू बिल्डिंग्स में अर्थिंग शायद कैपेसिटी के मुताबिक शायद नहीं भी देते हैं, क्योंकि हम लेमैन हम लोगों को पता नहीं है कि किस तरह का क्या होना चाहिए। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि जब भी आप बिल्डिंग बनाते हैं तो इंजीनियर्स का हेल्प जरूर लें, और इनकेस आप अर्थक्वेक के दौरान अर्थक्वेक में आप फंस जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको शांत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम घबरा जाते हैं तो नुकसान हमें ज्यादा पहुंचता है। अगर घर के अंदर आप हैं तो एक्सपर्ट ऐसे बताते हैं कि आप ये जो आपका बिल्डिंग्स का कॉर्नर में आप जाके जहाँ पे आपका पिलर्स रहता है वो सबसे ज्यादा सेफ होता है, लेकिन बच्चों को जब हम सिखाते हैं अगर वो स्कूल में होते हैं तो उसको डक कवर एंड होल्ड बोला जाता है। डक कवर एंड होल्ड मीन्स यू हैव टू डक योरसेल्फ डाउन, उसके बाद में अपने आप को दोनों हाथों से आपका सर को पकड़ लेना है, एंड देन टेबल जो उनका डेस्क रहता है तो उसका नीचे घुस के आपको खुद को बचाना है, क्योंकि ऊपर से जो आपका सीलिंग से या फिर कुछ भी वॉल आपका गिरेगा तो आपका सर को नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह का ट्रेनिंग हमारे एनडीआरएफ या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट टाइम टू टाइम देते हैं, लोगों को भी पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, जस्ट दिमाग से थोड़ा समय के लिए निकल जाता है, तब हम लोग हैं उसको याद दिलाने के लिए। और जैसे आपने कहा एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ भी है, जिसमें एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जिसको कहा जाता है, अभी हमारे यहाँ पे स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स भी है। हाँ, इसमें अभी मैन पावर कम है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स में आपका मैन पावर कम है, फिर भी जब भी उनका सहयोग हमें लगता है तो हम उसे कॉल करते हैं, तो सबसे पहले वो आते हैं। जब उनके पास इक्विपमेंट्स कम पड़ जाता है या फिर उनसे जब किसी को बचाव करना हो तो उस समय नहीं हो पाते, तब हम लोग एनडीआरएफ को बोलते हैं, तो एनडीआरएफ आके तब हमें सहयोग देते हैं। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीआरएफ एसडीआरएफ का प्री रोल बहुत ज्यादा होता है, प्री मीन्स एनी डिजास्टर से पहले ना, तो उसमें हम लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग जिसमें ट्रेनिंग बहुत दिया जाता है, तो लोगों को ट्रेनिंग जब भी है बोलते हैं तो आना जरूरी है, आप पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है।
1: जी, और डेमोन्स्ट्रेट भी दिखाते हैं।
0: हाँ जी,
1: उसको भी देखना बहुत जरूरी है और समझना।
0: हाँ जी मैम।
1: जी, तो गिंदन से मुझे आज आपने अपनी कीमती समय निकलकर हमारे स्टूडियो आए और हमारे श्रोताओं को प्राकृतिक आपदाएं से बचाव के लिए बहुत सारे जानकारियां दिए हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी तवांग श्रीमती गिंदन सोमू से, मानसून मौसम में किसी भी अप्रत्यक्ष घटनाओं से बचाव हेतु क्या करे और क्या ना करे विषय पर हुई भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता थे दोर्जी ड्रेमा। आइए श्रोताओं, इस बीच सुनते हैं पटियाला हाउस फिल्म से शौकत अमानत अली का गाया गीत। अन्विता दत्त के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर एजान लॉय ने।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ ओस्लो सिटी हॉल में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा तथा डिजिटलीकरण प्रमुख क्षेत्र है। अक्टूबर 2025 से व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता TEPA लागू होने के बाद यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास करेगा। इस समूह के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में 19 अरब डॉलर का है। यह शिखर सम्मेलन क्षेत्र के साथ भारत के बहुआयामी सहयोग को विस्तार देने में सहायक होगा।

0: साथ ही ये आपसे हितों में जुड़े वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श का अवसर भी प्रदान करेगा। शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक रिटायर्ड ने आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि एमएसएमई अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। आज नई दिल्ली में भारत में एमएसएमई सशक्तिकरण हेतु राज्य और केंद्र सरकारों के साथ रणनीतिक साझेदारी का नेतृत्व करने वाली ईशान इंटरनेशनल के प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतनु श्रीवास्तव के साथ बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, जनजातीय हस्तशिल्प, जैविक खेती की संभावनाओं, वन उत्पादों, पर्यटन अवसरों और विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत के कारण उद्यमिता और स्थानीय उद्योग विकास के लिए अपार संभावनाएं रखता है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई युवाओं, महिलाओं, कारीगरों, किसानों एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए सतत आजीविका के अवसर पैदा कर सकते हैं। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया है कि बेहतर आधारभूत संरचना, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, बाजार संपर्क और डिजिटल पहुंच के माध्यम से एमएसएमई समावेशी विकास को गति देने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं तथा आत्मनिर्भर अरुणाचल के और विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान दे सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सेन ने आज ईटानगर स्थित निर्वाचन भवन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तरीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी लीकेन कोयू तथा उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी शानिया कायमुजे भी उपस्थित रहे। ये बैठक 16 सितंबर 2025 को आयोजित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की तैयारियों की संबंधी पिछले बैठक के क्रम में आयोजित की गई तथा ये हाल ही में घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण के चरण 3 की गतिविधियों का हिस्सा रही। शिक्षा राज्य मंत्री पीडी सोना ने आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की 9वीं परिषद बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य भर में उच्च शिक्षा सुधारों और चल रहे आधारभूत संरचना विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बैठक की जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा है कि बैठक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA 1.0, RUSA 2.0 तथा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM OSHA के तहत हुई प्रगति का आकलन किया गया, जिसमें अधिकांश परियोजनाएं पूरी हो चुकी है या पूर्णता के करीब है। उन्होंने कहा कि बैठक में संस्थागत विकास योजनाओं को अद्यतन करने, सभी संस्थानों के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप संस्थानुसार रोडमैप तैयार करने जैसी प्रमुख प्राथमिकताओं को दोहराया गया है। श्री सोना ने कहा है कि परिषद ने NASC मान्यता कौशल आधारित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रम पुनर्गठन तथा नवाचार एवं अनुसंधान संस्कृति को मजबूती प्रदान करने पर भी जोर दिया है। तवांग जिला प्रशासन ने आज लोंगा सर्कल के अंतर्गत साजो स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में सेवा आपके द्वार 2.0 कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। इस शिविर में सोजा, पोइतो, दुगुम्बा, कुंभा और आसपास के गांवों के निवासियों को लाभ मिला है। शिविर में कुल 20 सरकारी विभागों ने भाग लिया और विभिन्न आवश्यक जनसेवाएं तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रमुख सेवाओं में आधार नामांकन, जनसुनवाई, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, पशु चिकित्सा सेवाएं, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY और ई श्रम के अंतर्गत पंजीकरण आदि शामिल रहे। और प्रोजेक्ट पुरिसा के तहत इनको फाउंडेशन द्वारा आज जीरो के लेम्पिया स्थित अपने कार्यालय सह पुस्तकालय में कहानी वाचन सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक तागे आन्या ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर महत्व और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ये कहानी वाचन सत्र स्कूली बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, क्योंकि आजकल कई बच्चे इंटरनेट और मोबाइल फोन पर अधिक निर्भर होते हैं, जो धीरे धीरे पुस्तकों के अध्ययन से दूर कर रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय अपू गपक। अ ग्रुप ऑफ आर्टिसंस एंड वीवर्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टुडे कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन। ड्यूरिंग द इंटरेक्शन आर्टिसंस एंड वीवर्स शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग फॉर द एट होम रिसेप्शन एट राष्ट्रपति भवन एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड for providing them a platform to showcase their talents. Addressing the artisans, President Murmu emphasized the need to provide support for artisans and weavers so that their artistic knowledge reaches as many people.

आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:55 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने के अंतर्गत लता मंगेशकर और आदिनाथ मंगेशकर के आवाजों में एक देशभक्ति नगमा।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइश शो पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है पेगांग लो से पेमा टाशी, दुर्जी वांगमू, लोपसांग वांगमू, नाकू और दुर्जी ने। आप सभी के फरमाइश पे प्रस्तुत है आप तो ऐसे ना थे फिल्म से मोहम्मद रफी का गायक गीत, बोल निदा फजली के और संगीत उषा खन्ना का।

अगला फरमाइश किया है नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंडा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने उपहार फिल्म का नगमा। इस नगमे को लिखा है आनंद बख्शी ने, गाया मोहम्मद रफ़ी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। चराय दियो सोनारी आसाम से बाइकोन मुंडा के फरमाइश पर सुनिए आदमी फिल्म से कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति का गाया नगमा। अनवर सागर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है जतिन ललित ने।

अगला नगमा सुनिए जसवादी खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नगनपुरी राधेश्याम नगनपुरी वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू सूरज कुमार दागसे और दिव्यांश के फरमाइश पर धर्मवीर फिल्म से मोहम्मद रफी और मुकेश का गाया नगमा। गीतकार आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश प्राप्त हुआ है। दातरंगी बाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा से। आप सभी के फरमाइश पे प्रस्तुत हैं गोपी किशन फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया गीत। आनंद मिलिंद द्वारा संगीतित इस गीत को लिखा है समीर ने।

श्रोताओं भी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 8:00। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेल की हर बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मुकाबलों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन गिल के हाथों में टीम की कमान। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाद सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटन्स प्ले ऑफ में। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 टूर्नामेंट आज से शुरू हुआ। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा सुपर शतरंज क्लासिक के 5वें दौर में ड्रॉ खेलकर आगे बढ़े और भारत की अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 6-3 से हराकर श्रृंखला में 1-1 से बराबरी की।

0: तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हमारे पास सबसे पहले आज जो खबर है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मुकाबलों की श्रृंखला के लिए आज भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। दोनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि टेस्ट में केएल राहुल और एकदिवसीय फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के उपकप्तान होंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी सहयोगी।
1: दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक दिवसीय टीम में शामिल किया गया है। हालांकि जसप्रीत बुमराह इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। अगर टेस्ट टीम की बात की जाए तो युवा यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है। विकेट कीपिंग का जिम्मा ऋषभ पंत के कंधों पर होगा। साई सुदर्शन, देवदत्त पड्डिकल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश राणा और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों के साथ एम सुथार, प्रसिद्ध कृष्णा, गुन्नूर बरार और हर्ष दुबे को इस टीम में स्थान मिला है। एक दिवसीय टीम की बात करें तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को श्रृंखला में मौका दिया गया है, लेकिन उनका खेलना फिटनेस के आधार पर तय होगा। अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली भी एक बार फिर नीली जर्सी में नजर आएंगे। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर भी इस सीरीज का हिस्सा है। मानव सुथार, गुन्नूर बरार और हर्ष दुबे वो खिलाड़ी हैं जिन्हें पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है। श्रृंखला की शुरुआत 6 जून को न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच से होगी। इसके बाद 14, 17 और 20 जून को 3 एक दिवसीय मैच खेले जाएंगे। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो आईपीएल के इस रोमांच के बाद भारतीय टीम फिर क्रिकेट के मैदान में उतरेगी सफेद जर्सी और नीली जर्सी में, और सबकी नजरें स्वाभाविक हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी को देखने के लिए होंगी, और फैंस की भी यही दुआ होगी कि रोहित शर्मा जल्दी फिट हों और नीली जर्सी में मैदान पे चौके छक्कों की बारिश करते हुए नजर आएं। और अब रुख करते हैं आईपीएल क्रिकेट का, जहां जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच इस समय मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 11 ओवर में 1 विकेट खोकर 137 रन बना लिए थे। इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए तो राजस्थान 5वें स्थान पर है और वो चाहेगी कि इस मैच को जल्द से जल्द जीता जाए और किसी तरह प्लेऑफ की जो दौड़ है जिसमें एक ही स्थान बचा हुआ है उसमें अपनी दावेदारी कुछ और मजबूत की जाए। दूसरी तरफ लखनऊ है जो इस प्रतियोगिता के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, तो स्वाभाविक है कि चाहेगी कि जाते जाते कुछ अच्छी विदाइयां और कुछ अच्छी मेमोरीज लेके आगे बढ़े अच्छे आने वाले सीजन के लिए। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया। सुनते हैं चेन्नई में खेले गए इस मुकाबले का पूरा हाल।
2: आईपीएल 2026 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाद अपनी दो और प्लेऑफ की टीमें मिल गई हैं। कल चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खुद तो प्लेऑफ में अपना स्थान पक्का किया, साथ ही गुजरात टाइटंस का भी प्लेऑफ में स्थान फिक्स कर दिया। और इस हार के साथ ही चेन्नई की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं और भी सीमित हो गई हैं। मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 180 रन बनाए, जिसमें संजू सैमसन के 27, शिवम दुबे के 26, कार्तिक शर्मा के 32 और डेवाल्ड ब्रेविस के 44 रन का योगदान शामिल रहा। हैदराबाद की ओर से कप्तान पैट कमिंस ने 3 और साकिब हुसैन ने 2 विकेट लिए। 181 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कल ईशान किशन मैच के हीरो बनकर उभरे, जिन्होंने 47 गेंद में 70 रन की पारी खेली। किशन का बखूबी साथ हेनरिक क्लासन ने दिया, जिन्होंने 26 गेंद में 47 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत हैदराबाद ने 19वें ओवर में 5 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: कल जब हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की थी तो हमारे सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एकमात्र टीम थी जो प्लेऑफ में पहुंची, और जब कल का मैच खत्म हुआ चेपॉक स्टेडियम में तो एसआरएच खुद तो गई और अपने साथ ही गुजरात को भी प्लेऑफ में लेके चली गई है। अब स्थिति यह है कि प्लेऑफ के लिए इस गाड़ी में 4 में से 3 सीटें भर चुकी हैं, एक स्थान अभी भी खाली है, जिसके लिए दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है, जहां पंजाब है जो अंक तालिका में 4थे स्थान पर है, राजस्थान रॉयल्स 5वें नंबर पर है, चेन्नई और दबे पांव से दिल्ली और कलकत्ता भी अभी उम्मीद और समीकरण बैठा रहे हैं कि किस तरह इस गाड़ी की 4थी सीट पे जगह बना करके अहमदाबाद तक का सफर तय किया जाए। और अब क्रिकेट के बाद रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट का, जहां मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन

0: टूर्नामेंट का आगाज आज से हो गया है, जहां कुआलालंपुर में भारतीय खिलाड़ियों ने मिले जुले परिणामों के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। तो सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों का हाल।
1: महिला सिंगल्स के क्वालिफायर मुकाबले में अश्मिता चालिहा ने चीनी ताइपे की पा यू पो को 21-23, 21-16, 21-16 से हराकर मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया। वहीं आकर्षि कश्यप को दक्षिण कोरिया की पार्का उन से हार का सामना करना पड़ा, जबकि मिक्स डबल्स के क्वालिफायर मुकाबले में एन सिक्की रेड्डी और राधिका शर्मा की जोड़ी ने मलेशिया के दातू अनिफ इसाक दातू असरहा और क्लारिसा सेन को 21-15, 21-17 से रोमांचक मुकाबले में शिकस्त दी। पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा करुणन और एम आर अर्जुन की जोड़ी ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टूमा जूनियर पोपोव को 21-19, 21-15 से मात देकर टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं महिला डबल्स में कनाडा की क्रिस्टल लाई और जैकी डेंट ने अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम की जोड़ी को परास्त करते हुए प्रतियोगिता में उनका सफर समाप्त कर दिया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो प्रतियोगिता का औपचारिक आगाज आज से हो गया है और कई क्वालिफायर्स खेले गए, और जो भारत के लिए सबसे अच्छा नतीजा रहा वो ये रहा कि भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी अब प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत को कल भी कई अहम मुकाबले खेलने हैं, कई भारतीय स्टार खिलाड़ी कल कोर्ट पे उतरेंगे और इन खिलाड़ियों की जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सहयोगी विशेष। विशेष, ये बताइए कि कल भारत के लिए नजरें जो हैं किन खिलाड़ियों पे होने वाली हैं, खासकर सिंगल्स में।
2: जी शक्ति, कल कई भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी अपने अभियान की शुरुआत करते नजर आएंगे। इनमें पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, थरुण मनेपल्ली और किरण जॉर्ज पर नजरें होंगी। महिलाओं के सिंगल्स में कई युवा खिलाड़ी भारत के लिए चुनौती रखेंगे। तन्वी शर्मा, अनमोल खरब, देविका सिहाग तथा ईशा रानी बरुआ, अस्मिता चालिहा, मानविका बंसोड़ और अन्य भारतीय खिलाड़ी से काफी उम्मीद होंगी।
0: जी बिल्कुल, अस्मिता ने आज क्वालिफायर्स के जरिए पहले राउंड में प्रवेश किया है। सिंगल्स का हाल रहा, डबल्स में कल भारत को अपने किन खिलाड़ियों से सबसे अधिक उम्मीदें होंगी?
2: देखिए, डबल्स में महिलाओं में पांडा बहनें अपना दमखम दिखाएंगी, वहीं मिक्स डबल्स में रुत्विका, शिवानी गड्डे रोहन कपूर के साथ खेलती नजर आएंगी। जबकि एक नई जोड़ी भारत के लिए है जिसमें अशित सूर्या और अमृता प्रथमेश अपनी चुनौती पेश करेंगे।
0: जी बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि कई युवा खिलाड़ी जो हैं यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। खासकर पांडा बहनें काफी संतुलन के साथ जो है उतरती हैं और एक बहुत अच्छा तालमेल दिखाई देता है, जहाँ पे श्वेत पर्णा और रूप पर्णा पांडा जब भी कभी अपने मुकाबले खेलती हैं। और अब बैडमिंटन के बाद बात करते हैं शतरंज के कुछ दावपेचों की, जहां भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने सुपर शतरंज क्लासिक के पांचवें दौर में अमरीकी वेस्ली सॉ के साथ ड्रॉ खेला। इसके साथ ही जर्मनी के विंसेंट कीमर ने अपने आधे अंक की बढ़त बरकरार रखी है। वह 3.5 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं। कीमर के बाद प्रज्ञानानंदा और नीदरलैंड के अनीश गिरी दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने संयुक्त बढ़त बना रखी है। और अब चेस के बाद रुख करते हैं हॉकी के मैदान का, जहां भारत की अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने कल ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में 6-3 से एक शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। जबकि भारत की अंडर 18 महिला टीम को मेहमान टीम के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये महिला टीम की लगातार तीसरी हार रही। पुरुष और महिला टीमें दोनों ही कल अपने अपने सीरीज के जो हैं चौथे मुकाबले खेलने के लिए उतरेंगी। और अब रुख करते हैं फीफा का, जहां फीफा धीरे धीरे वापस, फीफा का बुखार जो है वो लोगों के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे जैसे प्रतियोगिता करीब आ रही है फीफा विश्व कप की, कई टीमों ने अपने ऐलान करना शुरू कर दिए हैं खिलाड़ियों के। इसी कड़ी में फीफा विश्व कप 2026 में नेमार को ब्राजील की टीम में शामिल किया गया है। नेमार 2.5 साल बाद अपनी नेशनल टीम में वापसी कर रहे हैं। 34 वर्षीय खिलाड़ी की लोकप्रियता का कोई मतलब बैरियर नहीं है। शानदार खिलाड़ी जब भी उतरते हैं उनसे उम्मीदें होती हैं दर्शकों को, उनके फैंस को। और अब तक 128 मैच खेल चुके हैं जिसमें 79 गोल उन्होंने किए हैं, तो कोई दो राय नहीं कि एक बहुत शानदार खिलाड़ी वापसी करता हुआ फीफा जैसी बड़ी प्रतियोगिता में नजर आएगा। उधर प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल एफसी कल बर्नेल एफसी पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका में ऊपर आ गया है। आर्सेनल के लिए मैच में एकमात्र गोल काई हैवर्ड्स ने किया। इंडियन ओपन सफरिंग टूर्नामेंट का आयोजन 29 से 31 मई तक मैंगलुरु में होगा। ये प्रतियोगिता जापान में इस साल के आखिरी में होने वाले एशियाई खेलों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वहां पे पहुंचने से पहले आपको एक बड़ा मंच मिलेगा जहां पे आप अपनी प्रैक्टिस और अपनी पूरी तैयारियों को अंतिम जामा पहना सकते हैं, अंतिम रूप दे सकते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है भारतीय सफरिंग महासंघ SFI के तत्वाधान में किया जाएगा।

0: और आईएसएल की बात कर लेते हैं, जहां आईएसएल फुटबॉल में आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने मोहम्मडन एफसी को 2-0 से हरा दिया। वहीं कल खेले गए मुकाबले में केरला ब्लास्टर्स एफसी ने गोवा एफसी को 2-1 से शिकस्त दी। भारत के पूर्व बल्लेबाज और दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि युवा खिलाड़ियों को भारत की जर्सी में खेलने के लिए त्याग करने होंगे, क्योंकि शॉर्टकट से कभी सफलता नहीं मिलती है। सचिन तेंदुलकर अहमदाबाद में SRT10 अल्टीवेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन समारोह में शामिल थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह सेंटर देश में खेल संस्कृति बढ़ाने की दिशा में बड़ी भूमिका निभा रहा है।
1: SRT10 और एल्टावॉल एक पार्टनरशिप कर रहे हैं। स्पोर्ट्स सेंटर हमने इनॉग्रेट किया है आज, जहां पे बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स है और फैसिलिटीज आर मैग्निफिसेंट। और द आइडिया इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम स्पोर्ट्स लविंग नेशन टू स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन।
0: तो एक बहुत अच्छी बात यहां पर सचिन ने कही कि भारत अब एक स्पोर्ट्स लविंग देश से एक स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे सिर्फ खेल को देखना ही नहीं, उसमें कैसे बढ़ सकते हैं उसके नतीजे भी हमें दिखने लगे हैं। कई खेल जहां भारत अब तक प्रतिभागिता नहीं करता था, वहां बढ़ रहा है और लगातार अच्छे प्रदर्शन नजर आ रहे हैं। सचिन ने युवा पीढ़ी को सीख देते हुए ये भी कहा कि जरूरी नहीं है कि आप हर बार जब भी खेलने जाओ तो सफल हो जाओ, लेकिन हर बार आपको नई तैयारी के साथ जाना बहुत जरूरी है।
2: We want our children to be successful, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी and above all बच्चों को freedom देना पड़ेगा। हर बार आप खेलने जाओगे तो successful नहीं रहोगे, मगर हर बार तैयारी करके जा सकते हो। Okay? Success is never guaranteed, but your preparation and your discipline, focus, ये सारी चीजें, जैसे कि हम कहते हैं कि to tick all those boxes, वो तुम्हारे हाथ में है।
0: जी बिल्कुल, और इस कार्यक्रम में ICC के अध्यक्ष जय शाह और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे, और ये शानदार सेंटर अब युवाओं को अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। और सचिन की बात की तो बात करते हैं उनके एक फैन की भी, कि साहिल लुधियानवी का शेर है कि हजार बर्क गिरें आंधियां उठें वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान आमिर हुसैन लोन की कहानी पर जो अब सिनेमा के बड़े पर्दे पर उतरने जा रही है, बिना हाथों के अपना भविष्य लिखने वाले इस खिलाड़ी की फिल्म अनआर्म्ड शोल्डर की घोषणा कांस फिल्म फेस्टिवल में कर दी गई है। अपने सामने खड़ी हर चुनौती को अपने मजबूत इरादों से बौना साबित कर देने वाला एक खिलाड़ी आज लाखों युवाओं की प्रेरणा है। आइए सुनते हैं अपनी फिल्म की घोषणा के बाद इस खिलाड़ी ने क्या कहा और क्या अपने अनुभव साझा किए।
3: मैं बहुत मुश्किलात उठाने पड़े जब 8 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैं डटा रहा, अपने आप को मजबूत किया और कभी मैं ये नहीं सोचा था मैं यहाँ तक इन मुकाम पर पहुँचूँ, लेकिन ये कभी मैंने जहन में नहीं सोचा था कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ। लेकिन इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है और वो मेहनत है, वो सपना है जो मैंने अपने जहन में लेकर ये किया कि मैं एक दिन, ऐसा भी एक दिन आएगा जब मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूँ, मैं क्रिकेटर बनूँ। जब मैंने सचिन सर ने मेरी जर्सी पहनी और सचिन सर ने मुझे मतलब इतने तारीफ की, तो मैं वो बयान कैसे करूं। और इस फिल्म
0: जी बिल्कुल एक बहुत बड़ा लम्हा था उनके लिए। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और अपने सुझाव हमें हमारी ईमेल sportscan.air@gmail.com sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को

0: पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रूकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,600

0: कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रूपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations, comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland, have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।